एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के

0: के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन

संसार में अनेक प्रकार की सेवा हो सकती है, परंतु सबसे बड़ी सेवा मनुष्य को बुरे कर्मों से बचाकर उसे अच्छे मार्ग पर अग्रसर करना है। किसी मनुष्य को रोटी या वस्त्र देना इतना कठिन नहीं।

है जितना कि उसे पाप के दंड से बचाने के लिए आत्मनिष्ठ करना। जल पिलाकर किसी की तृष्णा को तृप्त करना एक अच्छी सेवा है, परंतु आत्मा की प्रभु प्राप्ति की तृष्णा तृप्त करना एक सर्वोच्च सेवा है। किसी मनुष्य को कुछ धन देकर उसके हालात को सुधारा जा सकता है, परंतु उसे अविनाशी धन देने और योग के आनंद का सौभाग्य प्राप्त कराने की सेवा कोई बिरला ही कर सकता है। इसीलिए हर मानव को प्रभु भक्ति में लीन होकर परमार्थ के कार्य करने चाहिए। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना चाहिए। ज्ञान घृत से आत्मरूपी दीपक ऐसा प्रज्वलित रहना चाहिए जिसे माया का कोई भी तूफान हिला ना सके।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सांसारिक मोह माया में फंसकर हम प्रभु को विस्मृत कर देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि प्राणी मात्र का एकमात्र सहारा सिर्फ प्रभु है।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: करते।
1: सुबह 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी, 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि, गीतों का कारवां

ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 10 बजे। दस बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा हिमाचली गीतों और लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम होगा 11:05 पर, और जय हिंद गीतमाला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आएंगे दोपहर 12 बजे। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन। 5:25 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा मंच। आज सुनिए हेलो जीनियस। शाम 6:05 पर सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर मौजा गराएं दिया कार्यक्रम होगा और आज बातचीत का विषय रहेगा राष्ट्रीय ई कृषि बाजार। किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 7:10 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात 8:00। देशगान 8:30 पर। हिम दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा रात 9:15 पर। रात 9:30 पर युवा भारती। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज 8:09, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितम्बर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
2: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan Pakistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, DOSLIC, and the seventh edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. Sushil Chandra Tiwari,

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूँ संगीता। कार्यक्रम का आगाज सुविचार के साथ। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था कि ज्ञान हमें योग्य बनाता है, परंतु अच्छा आचरण हमें प्रिय और सम्मानित बनाता है। यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति भी अच्छे विचारों के जरिए अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकता है। तो श्रोताओं, विचारों की खूबसूरती ही हमें सुंदर बनाती है, इसीलिए अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए विनम्रता, आत्मविश्वास और सहानुभूति को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और इस सुविचार के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे इस गीत के

0: दिखदा धीकी धीकी दिखदा।
1: इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुबह सुहानी कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज 29 अगस्त है और ये दिन इतिहास के पन्नों पर अपनी खास जगह रखता है। तो अब नजर डालते हैं आज विशेष पर और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक प्रारूप समिति का गठन किया गया था साल 1947 में। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। 1998 में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न कहा जाता है, उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1949 में भारत के शीर्ष वैज्ञानिक के राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। उन्होंने मंगल मिशन का नेतृत्व किया था और पहले ही प्रयास में मंगल पर मंगलयान को भेजने में भारत को सफलता मिली थी। नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 29 अगस्त को ही पारित किया गया था। जानकारियां और भी साझा करेंगे इस गीत के बाद।

जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओं, काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि 29 अगस्त को मनाई जाती है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। इन्हें अविभाजित बंगाल में क्रांति और धार्मिक सद्भाव की आवाज माना जाता है। इन्होंने लगभग 4000 गीतों की रचना की, जिन्हें नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश सरकार ने इन्हें निमंत्रण कर ढाका बुलाया था, जहां उन्हें वहां की नागरिकता प्रदान की गई और राष्ट्रीय कवि घोषित किया गया। इनका निधन 1976 में आज ही के दिन हुआ था।

और श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल

0: 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत आधिकारिक रूप से 2012 में हुई थी। ये दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। इस दिन इनका जन्म 1905 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि खेल और सेहत के प्रति जागरूकता बढ़े, और साथ ही इस दिन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को प्रदान करते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में सरकार ने इस दिन का उपयोग विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया है, जिसमें खेलो इंडिया मूवमेंट भी शामिल है। इसे 2018 में शुरू किया गया। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन मैदान में उतरना और आखिरी सांस तक लड़ना ही असली खेल है। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो। अय्या का सुपु खो गया दिल मेरा, सुपु सुपु

0: बसी बेबसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है।

और इसे विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण के घातक प्रभावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और साथ ही परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करना है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षणों पर पूरी तरह से रोक लगाना कितना आवश्यक है। थोड़ा पीछे चलते हैं। आज ही के दिन 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान के सेमी प्लास्टिक नामक जगह पर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर टेस्ट साइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। बस उसी ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए 2009 से इस दिन को मनाया जा रहा है। तो श्रोताओं, जैसे संगीत अगर मधुर हो तो दिल को छूता है, धमाके वाला संगीत किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक वैसे ही हम सबको एक ऐसा आसमां चाहिए जहां परिंदे उड़े ना कि जहरीला धुआं। तो फैलाइए प्यार बेशुमार और सुनते रहिए FM धर्मशाला 103.4 MHz पर।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब नजर आज की खबर पर। नेपाल में नई झील बनने से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी। आज से दिल्ली में साउंडस्केप्स ऑफ इंडिया का आयोजन हो रहा है। इसमें 20 देशों और 15 राज्यों के कलाकार एक मंच पर संगीत की प्रस्तुति देंगे। विविध परंपराओं को वैश्विक श्रोताओं तक पहुंचाना इसका मकसद है। पच्चीस अगस्त से शुरू हो चुकी पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC की ओर से यात्रियों के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मॉनसून के दौरान स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। IMA ने एडवाइजरी जारी करके बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाइयां न लेने की हिदायत दी है। मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज से मॉनसून के फिर से करवट लेने के आसार हैं। कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। ये थी आज की खास खबरें।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और एफएम धर्मशाला पर अगला कार्यक्रम है शुभ प्याग।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर धीमान का गाया हुआ ये लोक भजन।

नसीम बाला का गाया हुआ ये लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत जिसे गाया है फौजा सेन और प्रदीप परदेसी ने।

अभी श्रोता सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई है।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमे 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: टेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की

0: अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.news

0: radio@onia.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में दो दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकस को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said, during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
4: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established.

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
3: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
4: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जाँच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: गाने सुहाने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू का गाया हुआ नाराज फिल्म का गीत।

0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाए उसके पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा खेल के दौरान होने वाली चोट और उपचार। इससे संबंधित अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न आप अस्थि रोग विशेषज्ञ से डॉक्टर साहिल कुमार से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फ़ोन करना न भूलें रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। और इस कार्यक्रम को आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
2: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
1: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।

ये धुन जो आप सुन रहे हैं इसे तैयार किया है अनु मलिक ने, समीर ने गीत को लिखा है, आवाजें हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म है बादल।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की मिली जुली आवाजों में ये गीत था बेताब फिल्म से। आर डी बर्मन का संगीत था, रचना थी आनंद बख्शी की।

बाबुल सुप्रियो और जसपिंदर नुरूला के गाए हेलो ब्रदर फिल्म्स के इसी गीत के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब पेश है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं संगीता इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज शनिवार है, 29 अगस्त है और आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई। और श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हमारे और आपके बचपन के उस दौर की, जहां जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग का कानून चलता था, गिल्ली डंडा कंचे और लूडो में बेईमानी। याद है ना सब? बस आज का एक घंटा इन्हीं पुरानी और मजेदार यादों के नाम है। तो कॉल मिलाइए 01892224391 और साझा कीजिए बचपन के खेलों से जुड़ी यादगार बातें।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी, सिंह बोल रहा जी,
0: जी? कहाँ से बात कर रहे हैं
1: गुर्रापुर से। हाँ
0: जी? तो आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं बचपन के खेलों को जी। तो कोई बचपन से जुड़ी आपकी जो कोई खेल है, उसका कोई यादगार पल है तो आप साझा कर सकते हैं। जी, इनकी कॉल कट गई है। और 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर। और आज के गीतांजलि कार्यक्रम में हम बचपन के खेलों से जुड़ी यादगार बातों की हम साझा करने के लिए आपको कह रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं। हेलो,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?

0: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: जी जी धन्यवाद।
1: हाँ जी, कौन कौन से खेल खेलते थे आप बचपन में?
0: जी जी जी जी बचपन में काफी जो खेल खेलते थे, जैसे कि वो पहले आते थे वो प्लास्टिक वाले जो बॉल होते हैं तो उसके साथ भी खेलते थे, और उसमें क्या बोलते वो छोटी जो प्लास्टिक की जो बैट होती थी बच्चों की तो उससे खेलते थे, और क्या बोलते गुली गुली गिली डंडा तो खेलते थे, और एक जो है वो गिट्टिया होती थी वो बच्चे सब खेलते थे, और क्या बोलते जो आजकल जो खेल चला हो जो पकड़म पकड़ा मतलब जो कि जो सबसे तेज दौड़ेगा उसको पकड़ेगा तो उससे खेलते थे पहले।
1: तो इसमें क्या होता था, कभी आप तेज दौड़ते थे या कोई और ही तेज दौड़ता था और आपको पकड़ लेता था?
0: वो कभी कभी हो जाता था, कोई कोई कभी कोई दौड़ता था तो फिर उसको पकड़ लेते थे, और जो हम दौड़ते थे फिर हम आपको पकड़ लेते थे। कई बार इतने तेज दौड़ते थे बड़ी आसानी से पकड़ नहीं पाते थे
1: आपको। आप इतना तेज दौड़ते थे?
0: जी जी जी जी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर स्कूल में भी जो खेल होते हैं उनमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया?
0: नहीं, मैं किसी कारणवश स्कूल तो नहीं गया, ब्लाइंड होने के कारण किसी कारणवश तो
1: अच्छा घर
0: पे खेलते थे।
1: जी जी जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ साझा करी और कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद
1: जी। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर। और गीतांजलि कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ बचपन के खेलों से जुड़ी मज़ेदार बातें यादें साझा कर सकते हैं। अगले कॉलर फ़ोन लाइन पर हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
2: सराह से बोल रहे हैं, अनिल कुमार।
1: सराह से?
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी। और कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी।
1: ठीक है, और बताइए बचपन के खेलों के बारे में, कौन सा खेल आपको सबसे अच्छा लगता है?
2: तो गुल्ली डंडा और कंचे होते थे
1: जी। गुल्ली डंडा खेलते थे आप?
2: हाँ जी हाँ जी।
1: कितने लोग होते थे, कितने बच्चे होते थे आपके साथ जो आपके दोस्त होते थे?
2: 4-5 होते थे
1: जी। तो ऐसा होता था कि उन्होंने बुलाया कि चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं, और घर से आपको बहाना लगाना पड़ा, ऐसा हुआ कभी?
2: कई बार तो लग जाती थी गुल्ली डंडा, वो लग जाती थी पकड़ते पकड़ते हाथ में।
1: जी जी
2: हाँ जी।
1: और कोई खास याद आपकी बचपन के खेल की तो बता सकते हैं?
2: बचपन की यादें कहाँ रहती है इतनी याद।
1: अच्छा नहीं है बिल्कुल याद?
2: हाँ जी।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने गिल्ली डंडे के बारे में आपने बताया, यादें आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर, और इस नंबर को डायल करके एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्ते जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
3: मैं जी जोगिंदर नगर के लंगा गांव से बोल रहा हूं।
1: जी नाम बताइए।
3: मेरा नाम जी एक्स सूबेदार इंद्र सिंह ठाकुर।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद जी, बहुत ट्राई किया, पहली बार लगा।
1: चलिए लग तो गया आपका फोन। जी
3: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी, बताइए तो खेलों के बारे में आज बात हो रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस आज हम सब मिलकर मना रहे हैं।
3: जी
1: जी,
3: खेल का तो जीवन में मैडम जी बहुत ज्यादा महत्व है।
1: जी बिल्कुल,
3: जब हम बचपन में छोटे होते थे और 2 महीने की छुट्टियां होती थी स्कूलों में
1: जी,
3: तो गांव में वो तो सुविधा थी नहीं, तो गुल्ली डंडा और कबड्डी और कुश्ती लड़ते थे।
1: अच्छा जी, तो आप किस खेल में माहिर थे?
3: माहिरता हमारी ज्यादातर कबड्डी में होती थी।
1: अच्छा,
3: जैसे हमने कबड्डी खेलना, बिल्कुल कपड़े उस प्रकार के होते थे, सन 1970 की बात है,
1: तो हाँ जी, साथ, हाँ जी,
3: में, साथ में नदी होती थी, एक खेल के नदी में नहाना और उसके बाद फिर आ जाना। उसके बाद स्कूलों में जाते थे तो उस टाइम कोई बैट वगैरह क्रिकेट का नहीं होता था, तो फट्टे होते थे उसको खुद ही छिलना
1: जी,
3: और उसका बैट बना के, और बम्बू होता है जो बांस उसके नीचे होता है गोला, उसको ले जाके उसके साथ क्रिकेट खेलते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,

0: तो जो
1: फिर
0: आपकी
1: शाम
0: कबड्डी की टीम होती थी स्कूल में भी आपकी वैसी ही टीम थी?
1: जी, कबड्डी में होती थी, लेकिन ऐसा था कि इतना महत्व नहीं होता था उस टाइम खेलों में।
0: जी, पर कबड्डी
1: लेकिन
0: तो स्कूलों में खेली जाती है और अब भी खेलते हैं स्कूल में, बच्चे या टीचर्स खिलाते हैं जो खेल के टीचर होते हैं।
1: जी, आजकल
0: जी
1: है, लेकिन पहले इतना महत्व नहीं देते थे
0: जी
1: और ना ही इतना साधन होता था कि जैसे अगर मान ले कहीं टूर्नामेंट होते थे तो 15-16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था,
0: हाँ जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: इस
0: सही
1: प्रकार
0: बात है जी
1: से बहुत कम महत्व होता था।
0: जी
1: फिर भी अपने मनोरंजन के लिए और शरीर को फिट रखने के लिए यही चीजें होती थी।
0: बिल्कुल जी, खेलना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ है, और जो ये दिवस है वो यही समझाता है कि जो
1: जी
0: खेल है वो ज़रूरी है खेलना। तो कैसा
1: जी
0: लगा आपको आज बचपन की ये यादें साझा करके?
1: मैं प्रोग्राम सुन रहा था तो मेरे को बहुत याद, उसी वजह से याद आई, और फिर मैंने सोचा चलो आज फिर ट्राई करता हूँ, शायद फोन लग जाए।
0: चलिए, आपका फ़ोन मिल गया और आपसे बात हो गई, और साथ ही साथ आपके स्कूल की, आपके बचपन की जो यादें थी वो भी आपने हमारे साथ साझा करी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को।

0: एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि के साथ हम फिर से हाजिर होंगे 9:30 पर, और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएस सेवा और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इस संदेश के बाद
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के दो दिवसीय दौरे पर, कई विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू होगी थेरेपी ऑन व्हील्स मोबाइल सेवा। समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू साइन। केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के माध्यम से ऊना जिला में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। और धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितंबर से फिर होगी आरंभ, सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध होंगी उड़ानें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज डाडासीबा में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वहीं मछुआरा सम्मान निधि वितरण व मछुआरा सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नदौन के भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गाँव सेरा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह मुख्यमंत्री कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और यहां मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण व सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र की एक

0: स्थित बागवानी मिशन की योजना के अंतर्गत किसानों बागवानों को छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे प्रदेश की फल और सब्जियों की पैदावार को जल्द खराब होने से बचाया जा सकेगा, साथ ही 2 से 3 महीनों तक बाजार में अच्छे मूल्य मिलने तक स्टोर किया जा सकेगा। ये जानकारी देते हुए उद्यान विभाग के निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 10 से 30 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं।
1: लोगों को छोटे छोटे जैसे स्टोरेज कोल्ड स्टोर उपलब्ध हो जाएंगे तो लोगों को एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता था, 2-4 दिन जब सड़कें खराब हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है तो वो अपने ही स्टोर में स्टोर कर सकता है, और उसको जब अच्छी मार्केट मिलेगी 2-3 महीने के बाद तो उसका अच्छा जो आमदनी है, जो उसका रेट है तो अच्छा मिलेगा। 30 मीट्रिक टन वाले इसमें तो 10-12 लोगों ने अभी तक अप्लाई भी कर दिया है। जिन लोगों ने, किसान बागवानों ने स्थापित कर दी, 4 लोग हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में मशोबरा में और हमीरपुर में 2-3 किसान हैं, उन्होंने लगाए हैं।
0: प्रदेश में दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, थेरेपी और विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन ने थेरेपी ऑन व्हील सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके शुरुआती चरण में मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 3 बसों को विशेष रूप से थेरेपी उपकरण, काउंसलिंग और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं से लैस किया गया है। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये मोबाइल सेंटर उन बच्चों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने में मदद करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9वें महीने में।
2: हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को सुधारने और उसमें तेजी लाने के लिए शुरू की गई रैंप परियोजना के तहत प्रदेश में उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऊना जिले के हरोली में महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 25 महिला उद्यमियों ने प्रशिक्षण लिया।
4: ऊना जिला में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमिता से जुड़ी महिलाओं की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र द्वारा इन दिनों प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के माध्यम से हरोली उपमंडल में समूहों से जुड़ी 25 महिलाओं को उनकी उद्यमिता विकास और अपने कार्यक्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक इस्तेमाल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे ये महिलाएं अपने कारोबार को नई दिशा देने में सक्षम होंगी। प्रशिक्षक बिंदु महाजन ने बताया कि मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारोबार की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को प्रभावी बनाने के उपयोगी माध्यम बन चुका है और इसका इस्तेमाल उत्पादों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने और संभावित ग्राहकों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: इन दिनों खराब मौसम के चलते ठप पड़ी धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितंबर से दोबारा शुरू की जा रही है। विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने इस रूट पर अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार सप्ताह में 4 दिन ये हवाई सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस रूट पर हवाई सेवा बहाली से एक बार फिर यात्रियों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कमजोर पड़ा मानसून आज शाम से एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के मध्यमवर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जबकि कल से अगले 5 दिनों तक मानसून की सक्रियता से मैदानी व मध्यमवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
5: 30 अगस्त की देर शाम से जो मानसून फिर से सक्रिय होगा और 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक संभावना है।

0: प्रदेश की जो मैदानी दिखती है, जो मध्यवर्ती, यहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को संभावना है कि हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश, साथ एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। ओवरऑल 1 जून से लेके एज ऑन 28 अगस्त तक बात करें तो पूरे प्रदेश में एवरेज जो एक्चुअल बारिश है वो सामान्य से अराउंड 10% कम रिकॉर्ड की गई। हालांकि केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें विशेषता लाहौल स्पीति, जहाँ पे सामान्य से 57% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की एक खबर है, हिमालयी झीलों की गहराई और क्षमता का आंकलन करेगा आईटीआई मंडी का उपकरण सोनार। पंजाब केसरी के अनुसार विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर शेष 4 दिन की बैठकों में भी हंगामे के आसार है। 31 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले ही पक्ष विपक्ष फिर से बनाएंगे रणनीति। अस्पतालों में हिम केयर के तहत पैकेज रेट अथवा वास्तविक खर्च में से जो कम होगा उतना ही मिलेगा क्लेम, दैनिक भास्कर की एक खबर है। दिव्य हिमाचल लिखता है कि गग्गल एयरपोर्ट के साथ बनेगी एरो सिटी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी परियोजना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर, कई विकासात्मक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शुरू होगी थेरेपी ऑन व्हील्स मोबाइल सेवा, समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू साइन। केंद्र सरकार की रैंप परियोजना के माध्यम से ऊना जिला में महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, और धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई सेवा 1 सितंबर से फिर होगी आरंभ, सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध होगी उड़ाने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक सौ 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के गीतांजलि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बचपन के खेलों से जुड़ी यादगार बातें, किस्से, कहानियाँ। आप कुछ भी साझा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 01892224391। हेलो हेलो हेलो।
5: हेलो,
4: हाँ जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है।
5: अभी आ रही है अभी आवाज़?
4: बिल्कुल नहीं, बहुत कम आ रही है। आप दोबारा से कॉल कीजिए
5: जी। आ रही आवाज़ है
4: जी, या फिर सिग्नल में आ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल कम आ रही है आपकी आवाज़।
5: सिग्नल में तो हूँ मैं, सिग्नल में
4: सर। चलिए दोबारा फिर से नंबर मिलाइए, 01892224391, ये है टेलीफोन नंबर। इससे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए हम विनम्र निवेदन करते हैं कि जब भी आप फोन मिलाएं, सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। हेलो,
5: नमस्कार जी।
4: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
5: किशोरी लाल। अभी आ रही है आवाज?
4: बहुत कम आ रही है जी अभी भी। चलिए, आपने दोबारा फोन मिलाया, मिल गया है फोन, पर फिर भी सिग्नल में आ जाइए।
5: अरे सिग्नल तो फुल है
4: जी हम तक। चलिए बताइए बचपन के यादगार खेलों के बारे में जो आपको अभी भी याद है।
5: यादगार एक तो कबड्डी होती थी
4: जी,
5: रेड हुई डंडा गुल्ली
4: जी। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद था?
5: मेरे को सबसे पसंद था हॉकी, बांस की हक्की बनाते, बांस की गेंद बनाते थे।
4: अच्छा जी, हॉकी खेलते थे आप जी। तो आपके जो पसंदीदा जैसे खिलाड़ी होते हैं वो कौन था आपका पसंदीदा खिलाड़ी?

0: पिल्ले पिल्ले धनराज पिल्ले।
1: अच्छा जी जी जी, और कोई खास बात आपको याद हो तो बता सकते हैं आप।
0: हॉकी हो गई, डंडा गुल्ली हो गई और कबड्डी हो गई, ऐसे खेलते रहते थे बचपन की याद है। आप बचपन की याद दिला दी आपने।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करते हैं कि बाहर जाकर वो खेलें? जी जी बैडमिंटन खेलते? जी बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ आप उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं और खेलते हैं उनके साथ, अच्छा लगता है आपको भी, है ना? जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। खेल सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं होते, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भी खेले जाते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप भी इनकी तरह अपनी बचपन की कोई याद या यादगार खेल हो या उसके कोई किस्सा कहानी हो आप साझा कर सकते हैं। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर, और अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। आपकी कृपा, भगवान की दया है, आपकी दुआ है, बहुत बढ़िया, मजे में हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है, मज़े में रहना चाहिए। और जी बिल्कुल, जो विषय है बताइए उसके बारे में, कौन सा खेल आपको बहुत ही अच्छा
2: बचपन जो
1: लगता
2: होता है,
1: था? जी
2: आज बचपन जो होता है वो होता है बेफिक्रा,
1: हाँ
2: कोई
1: बिल्कुल
2: फिक्र नहीं होता है, मस्ती जैसे भी है। आकर के घर आकर के माँ बाप से जबरदस्ती जो भी मांग होती है वो, मेरे लिए ये दो, मेरे लिए वो दो, चाहे रो करके चाहे चिल्ला करके चाहे जैसे भी है, तो माँ बाप उस बच्चों की वो जरूरतें पूरी कर देते हैं। लेकिन अपने बचपन में बच्चे जो होते हैं मस्ती बहुत करते हैं। हमारे
1: जी
2: बचपन में ऐसा होता था कि हम जो बड़ी अजब अजब खेले खेलते थे, जैसे लट्टू होता ना, वो बिल्व होता है,
1: बिल्कुल
2: वो बिल्व
1: रस्सी के साथ
2: उसमें
1: जी।
2: से सुराख करके उसमें गुद्दा निकाल करके उसमें कील डाल करके लट्टू खेलते थे हम,
1: जी बिल्कुल।
2: तो
1: और
2: घुमाना है उसको, फिर वो डंडे से उसको एक लकड़ी ले लेनी है लंबी सी, और उसके बाद कपड़े से उसके थोड़ा छंटा उसको बोलते थे, छंटा बना करके उसको मारना और फिर उसको घुमाना, तो उसमें आवाज भी आती थी गू।
1: जी जी
2: और
1: जी
2: फिर लकड़ी का एक गधा होता था, उसको गधा बोलते थे हम,
1: जी
2: लकड़ी का छोटा सा, वो भी लट्टू की तरह की होता था।
1: जी
2: फिर हम हॉकी खेलते थे, तो हॉकी किसी शीशम की या किसी वृक्ष की टहनी तोड़ करके उसको मुड़ा हुआ भाग होता था उसमें लंबी करके उसके हॉकी खेलते थे। और पिट्ठू खेलते थे, पिट्ठू मैंगो छोटी छोटी छोटी होती है, पत्थर को उसको एक दूसरे के ऊपर कर करके 10-15, फिर उसको कपड़े का बना करके गेंद बना करके उसको फेंकना, ऐसे मारना और मार करके भागना,
1: जी
2: और
1: जी
2: उसको पिट्ठू बोलते थे।
1: हाँ वो आपने सबसे सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला है आपने, पिट्ठू का या लट्टू घुमाने का या हॉकी का सबसे
2: ज्यादा करके
1: ज्यादा?
2: तो मैं
1: जी
2: लट्टू लट्टू घुमाता था, लट्टू खेलता था।
1: जी जी जी
2: फिर 12 टहनी होती थी, फिर वो कई ऐसी होती थी। फिर मेरे को एक बहुत बढ़िया शौक था कि मैं उल्टे अपने हाथों से उल्टा होकर के चलता था,
1: अच्छा
2: हाथों पे ऊपर करके, पैर ऊपर और हाथ नीचे करके कम से कम 15-20 कदम चलता था, तो लोग मेरे को देखते थे कि ये सर्कस का योग है।
1: जी जी बहुत, हाँ बचपन में सारी ऐसी उल्टी सीधी मतलब हरकतें बच्चे करते रहते हैं, पर उसमें देखिए ना शारीरिक जो ताकत होती वो भी आती थी, तभी भूख लगती
2: बिल्कुल
1: थी।
2: बिल्कुल,
1: जी
2: कभी भगवान की कृपा से कभी बीमार नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात है, देखिए 12-13 साल तक तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ खद्दर होता था, मतलब सूत होता ना कपास, उसको कपास हमारी माँ जो है वो उसको पहले चरखे पे काटती थी सूत, फिर उस जलाहों के पास जाकर के उस पे कपड़ा बुनना, फिर
1: जी
2: उसका जो खद्दर का जो कुर्ता होता था, खाली कुर्ता ही, नीचे
1: जी
2: कुछ नहीं, खाली कुर्ता में 10-12 साल तक तो ऐसे ही नंगे ही, स्कूल भी जाना तो नंगे ही जाना, कहीं भी खेलना तो नंगे ही।
1: जी उस समय का दौर ही ऐसा था।

0: अरे बच्चे वैसे ही जाते थे तो
1: बिल्कुल,
0: जी
1: हमारे
0: बिल्कुल
1: साथ लड़कियां भी खेलती थी, लड़के भी खेलते थे, तो रात
0: जी
1: को जब लुकन छुपाई, छून छुपाई, बड़ा ऐसे खेलना, कितने मजा था। जो बचपन होता है, बचपन तो एक बादशाह होता है, बादशाह दिन होते हैं वो, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के बच्चों के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ खेलना जरूरी
1: देखिए,
0: है?
1: मैं पेरेंट्स
0: जी
1: को कहना चाहता हूँ कि
0: जी
1: बच्चों को, देखिए हम लोग डरते हैं कि बच्चे मिट्टी में खराब हो जाएंगे, लेकिन जब हम मिट्टी के साथ सनेंगे, मिट्टी के साथ रहेंगे, तो मिट्टी में एक ऐसा आकर्षण है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण भी है, मैग्नेटिक भी है, तो इसमें इसमें लोह, मतलब जैसे लोहे के भी कितने खनिज पदार्थ जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे शरीर को उसमें ताकत मिलती है।
0: जी बिल्कुल
1: बच्चों को बाहर खेलने भेजिए, फील्ड में भेजिए, ना कि अंदर रह करके
0: जी
1: उसको कमरे में बंद कीजिए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जब
0: बाहर
1: तक
0: जा
1: हम,
0: जी
1: हाँ जी,
0: बाहर
1: बाहर जब
0: भेजिए
1: उनको, हाँ
0: और खेलों से रूबरू कराइए, खुद भी खेलिए उनके साथ, है ना? तो अच्छा लगता
1: जी, हाँ
0: है
1: जी,
0: जी।
1: देखिए हम पहले हम कुश्ती करते थे अखाड़ों में जाकर के, जिसे अब छिंजे होती हैं, तो पहलवान अखाड़े में करते हैं कुश्ती, तो उनका शरीर देखिए कितना सुडौल होता है, कितना मजबूत होता है। तो बच्चों को अपने मिट्टी से मिलाइए,
0: जी चलिए,
1: क्योंकि ये
0: बहुत
1: ना कहिए
0: जी
1: कि
0: जी जी बहुत
1: माटी में
0: बहुत
1: मिट्टी है।
0: अच्छी बातें आपने बताई। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनके बारे में भी बताते रहें और उनके साथ खेलें,
1: बिल्कुल
0: तो अच्छा लगेगा। और आपने बहुत अच्छी बातें आपने बचपन के खेलों की आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा। कॉल किया, धन्यवाद
1: धन्यवाद संगीता जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। आप भी इनकी तरह अपने बचपन के खेलों की यादें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर।

0: गीतांजलि। और आज के प्रोग्राम में हम बचपन के खेलों से जुड़ी यादगार बातें, किस्से, कहानियां, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर। हेलो, नमस्ते जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी।
0: बढ़िया है, चलिए फोन मिलाया तो बताइए कौन सा खेल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बचपन में?
1: पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खेल खेलना बड़ी अच्छी बात है, खेलोगे तो खेलोगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, खेल कोई भी हो, चाहे क्रिकेट का हो या कोई और खेल हो, किसी के अंदर खेलना चाहिए। ऐसे बच्चे खेलते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर कोई बाजू तोड़ा के आ जाता है, कोई टांग तोड़ा के आ जाता है, तो घर में क्लेश हो जाता है।
0: जी ऐसा है कि खेल जो होता है बचपन में जो खेलते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है ना, उसमें पेरेंट्स को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर खेल को खेल की भावना से ही खेलें। देखिए कई सारी फिल्में हैं हमें वो बताती हैं कि खेल जो है वो कैसे खेलना चाहिए, एकता होता है, भाईचारा होता है उनमें ना, तो ये सब हम बच्चों को समझाएंगे और खेलने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, तभी तो वो खेलेंगे ना। चलिए हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप को बचपन में कौन सा खेल अच्छा लगता है? जी
1: टाइम में जो खेलें खेले जाती हैं आजकल वो है ही नहीं जी।
0: हाँ, वही बताइए ना, कौन सी खेले थी वो?
1: खेलते थे ज्यादा
0: जी, कंचे खेलते थे जी। कितने जीते आपने कंचे?
1: कई बार तो जगह नहीं रहती जेब में,
0: और कई बार ऐसा होता ना कि वो उस कलर का जो कंचा है वही जीतना है, कई बार ऐसा भी होता था जी।
1: जी
0: चलिए जी, आपने कॉल किया और अपने बारे में बताया, बचपन के जो आपका कंचे का खेल है उसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा हमें, कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
1: जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया जी, देखिए आपकी कॉल आ गई, हम खुश हो गए।
1: जी, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पर अभी।
0: जी, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर।
1: जी, यहाँ बारिश तो नहीं है लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बहुत अच्छा है। और इस अच्छे से मौसम में अब अच्छी अच्छी सी बातें बताइए, बचपन से जुड़ी, अपने खेलों से जुड़ी।
1: हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम है ना स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल में भी हम चोर सिपाही का खेल खेलते थे, जो चिट्ठियों द्वारा खेला जाता था।
0: जी
1: उसमें राजा होता था, सिपाही, चोर और मंत्री। इसमें से हर एक के नंबर अलग अलग होते थे, जैसे कि राजा के 1000 नंबर होते थे,
0: जी
1: मंत्री के 500, सिपाही के
0: जीरो
1: 300 और चोर के डबल
0: चोर के
1: जीरो
0: जीरो हाँ जी, डबल जीरो जी
1: तो जो ऐसे करके जिनका नंबर लास्ट में सभी का काउंट किया जाता था, और ये मतलब गेम होता था ना, जो
0: जी
1: आखिरी में जिसके ज्यादा नंबर होते थे उसे विनर बनाया जाता था, और उसे मतलब कुछ ऐसे पेन हुआ, कॉपी हुआ, ऐसे गिफ्ट भी मिलते थे। ये
0: बहुत अच्छा है। ये
1: तो
0: खेल खेल हमने भी खेला है, और स्कूल में जब हमारी क्लास नहीं लग रही होती, कोई टीचर नहीं आता, तब खेलते थे
1: हाँ
0: बच्चे।
1: बिल्कुल खेलते थे, और जैसे घर से जल्दी निकल जाते थे ना कभी हम, तो स्कूल की बाउंड्री में जाके बैठकर भी हम ये खेल खेलते थे, और ये खेल तो मैं अपने बच्चों के साथ में अभी भी खेलता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। लूडो, सांप सीढ़ी, ये जैसे जो कैरम, ये भी तो होते हैं पारिवारिक, ये जो गेम होते हैं जो परिवार के लोग बैठकर खेलते हैं, इंडोर गेम्स कहते हैं इन्हें, वो भी खेलते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल, हाँ वो लूडो जो होता है ना वो खेलते हैं मोबाइल पर, बट ऐसे एक सांप सीढ़ी का खेल होता है वो स्कूल में खेला था हमने, और अभी जैसे कि कुछ कंचे भी खेलते हैं ना बच्चे, तो कुछ कंचे भी हमने खेले हैं, और एक बरनी भर के मैंने कंचे जीते थे जो फिलहाल अभी तक पड़े हैं मेरे पास में।
0: जी बहुत
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी
0: बात है, कंचे संभाल के रखे, अपने बच्चों को बताएंगे आपकी, हाँ देखिए मैंने इतने कंचे जीते। सिखाया भी
1: मैं
0: है
1: तो
0: उन्हें,
1: बताऊं
0: वैसे वो
1: जैसे कि
0: खेलना भी बहुत तो कठिन होता है वैसे भी, वो बीच वाली उंगली से वो
1: हाँ
0: कंचे को मारा
1: कठिन,
0: जाता
1: बहुत
0: है। जी
1: कंचे कंचे जितना बहुत कठिन होता है। और जैसे कि पहले क्या होता था कि हम बाहर खेलते थे ना, तो मम्मी पापा को मतलब ऐसे डर रहता था कि अगर पापा आ जाएंगे या देखेंगे तो चिल्लाएंगे, जल्दी घर जाने का ऐसा होता है, बट आजकल के बच्चे को तो हम घर से निकालते तब जाके वो खेलने के लिए जाते हैं।

0: तो ये हमें अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा ना थोड़ा।
1: जी बिल्कुल सोचना पड़ेगा। बट पहले क्या होता था ना, पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम होता था तो इसलिए थोड़ा खेलने का टाइम मिल जाता था, लेकिन आजकल तो कंपटीशन का युग है और पढ़ाई में बच्चे इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें खेलने का टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आने के बाद में होमवर्क, होमवर्क के बाद में कोचिंग, इस तरह के जो काम होते हैं ना, इसमें बच्चा थोड़ा खेल के लिए पिछड़ रहा है।
0: हाँ, तभी तो ये खेलो इंडिया अभियान जो है हमारी भारत सरकार ने चलाया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के साथ भी जोड़ा जाए।
1: जी इसीलिए तो
0: जी
1: कई स्कूलों में अभी खेल प्रतियोगिता भी शुरू कर रहे हैं लोग, जगह जगह मतलब एक आधा घंटा निकाल के बच्चों को ग्राउंड में लेकर खिलाते भी हैं खेल वगैरह ऐसे।
0: जी हाँ, वैसे
1: जी
0: खिलाते हैं और वो अलग से एक जो पीरियड रखा होता है वो खेलों का ही होता है।
1: जी बिल्कुल। और आपको
0: जी
1: बताऊँ, मेरी लड़की बिंदिया है, अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रही है, वो कराटा में अभी फर्स्ट आई है सबसे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अपने बच्चों को सिखाते रहिए। और आपने आज बचपन के जो खेल हैं उनके बारे में हमारे साथ यादें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: जी धन्यवाद संगीता जी, आपको
0: जी,
1: भी।
0: आप भी इनकी तरह अपने बचपन के खेलों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा खेल आपको अच्छा लगता था। और 01892224391 यह टेलीफोन नंबर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम का नाम है गीतांजलि। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
1: नमस्कार जी। मैं दिलवाग सिंह बोल रहे हैं, पंजाब
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं
1: से, जिला हुशियारपुर से।
0: जी? थोड़ा सिग्नल में आकर बात कीजिए।
1: मैं पंजाब से, जिला हुशियारपुर से।
0: हाँ जी, बताइए विषय के बारे में क्या बोलना चाहते हैं।
1: बोलना भी एक आज खेडते गुल्ली डंडा खेडते एक बारी, ते आम तो थले खेडते ना जमीन से, आई वो को जानी कि बनेरिया के कोठिया से परनाले रखे थे, तो उन्होंने गुल्ली रख के ना बिच,
0: हाँ जी हाँ जी
1: मेरे ब्रदर ने जिदा डंडा मारा मेरे हाथ से लगे, नाक से लग गया।
0: ओहो, फिर क्या हुआ? घर में लड़ाई हुई, फिर मम्मी से डांट पड़ी दोनों को? हाँ
1: लड़ाई तो नहीं हुई, पर मिनट मिनट ही वो कड्डी मोटी हो गई। उधर एक पिंड से ब्याह सिखा ही, ब्याह देखना था, ब्याह भी नहीं देखा चंगी तरह।
0: चलिए, खेल के कारण आपको लग गई और शादी में जाने से आप नहीं जा पाए, मतलब उसका आपको खेद है कि हम नहीं जा पाए।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने बताया अपने जो बचपन के खेल हैं गिल्ली डंडा उसके बारे में, और कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: ठीक है, ओके।
0: जी।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? अपना नाम
1: जी, मैं
0: बताइए।
1: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, सुन रहे हैं आप सुबह से प्रोग्राम?
1: जी, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है।
0: जी, धन्यवाद। बताइए खेलों के बारे में, बचपन की जो आपकी खेले हैं, कोई याद है, किस्सा कहानी है?
1: तो मेरे खेल की अगर बात करें तो देखिए, मैं क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव है मेरा, और मैंने रेडियो सुनना क्रिकेट की वजह से सुनना शुरू किया था, क्योंकि 2007 में मैंने पहली बार रेडियो को खरीदा था इस क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए ही, क्योंकि उस वक्त हमारे इधर बिजली का बहुत दिक्कत होता था, तो मैच नहीं देख पाते थे, इसलिए मैंने रेडियो को खरीदा और उसका कमेंट्री सुनता रहा। और अभी तक देखिए, ये हाल है कि अभी तक, अभी भले ही हम मोबाइल पे सुन देख सकते हैं कोई भी मैच, लेकिन लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि क्रिकेट मैच का जो कमेंट्री है वही सुनने में मजा आता है। और अभी भी जब भी क्रिकेट, जब रेडियो पे कमेंट्री आता है तो मैं सुनता रहता हूँ। ओ हो, क्या बात, महिलाओं वाला क्रिकेट हो या फिर हमारे जेंट्स वाला हो, मतलब दोनों ही मैं सुनता रहता हूँ।
0: जी, तो आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है?
1: जी, मेरे पसंदीदा तीन खिलाड़ी हैं, पहले तो हैं सचिन तेंदुलकर जी, और
0: जी,
1: दूसरे हैं
0: बिल्कुल।
1: गौतम गंभीर, और तीसरे हैं हमारे रोहित शर्मा जी, और खास करके कैप्टन कोल जो महेंद्र सिंह धोनी, उनको उनको तो बिल्कुल ही नहीं भुला सकते, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए देखिए तीन तीन जो बड़ी ट्रॉफी है वो उन्होंने ला के दिया था भारत के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, और हमारे भी पसंदीदा खिलाड़ी वही हैं, MS धोनी जी, और सचिन
1: जी,
0: जी तो वो तो है ही हैं।
1: वो तो
0: उन्हें
1: है
0: आज ही के
1: जी।
0: दिन जो है वो राष्ट्रीय जो खेल सम्मान जो है मिला था, पुरस्कार उनको।
1: जी,
0: जी
1: और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो महिला क्रिकेट टीम के जो हैं वो उसमें हमारे जो पसंदीदा तीन खिलाड़ी हैं, पहले तो हैं देखिए हरमनप्रीत कौर जो इस वक्त वर्तमान कैप्टन भी हैं, और दूसरे हैं स्मृति मानधना, और तीसरे हैं हमारे ऋचा घोष, तो पश्चिम बंगाल से आती हैं।
0: जी तो बचपन से आप यही खेल खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट?

0: जी
1: जी
0: और कोई
1: मैं
0: जी
1: नहीं, वो देखिए बचपन में फुटबॉल में मुझे इतना रुचि नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए मैं, और मेरी देखिए क्रिकेट के लिए मैंने 1 साल अपना बर्बाद कर दिया। मतलब कि उस टाइम पे मेरा 10वीं का एग्जाम चल रहा था और मैंने बोर्ड का एग्जाम 2011 का जब मैच, मतलब कि पहली बार जो देखिए मेरा एग्जाम था 19 तारीख को, और 19 तारीख को ही भारत और बांग्लादेश के बीच पहला आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का पहला मैच 19 फरवरी को था। उस दिन मैंने इस मैच को देखने के लिए मैंने अपना एग्जाम भी छोड़ दिया था। बाद में मैंने बोला कि एक एग्जाम में निकल गई, आप तो बाकी एग्जाम देखे कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने पूरे मतलब 1 साल अपना
0: जी
1: क्रिकेट के
0: जी
1: साथ
0: चलिए,
1: दिया।
0: आपने मतलब खेल के लिए पढ़ाई का जो है वो आपने बलिदान कर दिया, समझ लीजिए कि आपने पेपर दिया ही नहीं।
1: जी, और
0: जी चलिए,
1: बाद
0: बहुत
1: में जो
0: बहुत बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही जुड़े रहिए खेलों के साथ और सुनते रहिए FM धर्मशाला भी साथ के साथ। जी
1: जी, धन्यवाद।
0: जी

श्रोताओं, आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्र चाहे बढ़ गई हो, फिर भी हम सबके अंदर का जो चुलबुला खिलाड़ी है वो आज भी जिंदा है। वीडियो गेम्स और मोबाइल के इस दौर में कभी बच्चों के साथ वही पुराना पिट्ठू या कंचे का खेल खेल कर देखिए, दिल को सुकून मिलेगा। खेल सिर्फ मेडल जीतने के लिए नहीं, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भी खेले जाते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहिए और राष्ट्रीय खेल दिवस की एक बार फिर से आप सबको बधाई। आपको बता दें कि तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी संगीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि FM बैंड 103.4 MHz पर। आज श्रोता गीतों का कारवा लेकर हाजिर हो गई है आपकी दोस्त सुमन। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोतो, अवतार फिल्म का गीत आपने अभी सुना। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आक्रमण फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपना देश फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, तो आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोता, अभी आप सुन रहे हैं गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचाते हैं।

0: गीतों का कारवां एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओ। आप इस समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से टीजे कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सूरज और चंदा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: तेरे नाम
0: गीतकार है आनंद बख्शी।

श्रोता, अभी आप एंजॉय कर रहे थे गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कमलजीत शर्मा की आवाज में सुन रहे हैं आप इस हिमाचली गीत को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से हमीरपुर और कांगड़ा जिला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज डाडासीबा में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। वहीं मछुआरा सम्मान निधि वितरण व मछुआरा सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन के भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गाँव सेरा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह मुख्यमंत्री कांगू में जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। यहां मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि वितरण व सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल की बाढ़ आपदा से अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इसमें त्रिशूली परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उनमें से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 149 लोग चीन से नेपाल में सुरक्षित प्रवेश कर चुके हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित है। भारतीय दूतावास इन लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी है। प्रदेश में दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, थेरेपी और विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा और साफिया फाउंडेशन ने थेरेपी ऑन व्हील सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके शुरुआती चरण में मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 3 बसों को विशेष रूप से थेरेपी उपकरण, काउंसलिंग और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं से लैस किया गया है। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में ये मोबाइल सेंटर उन बच्चों तक विशेषज्ञ सेवा पहुंचाने में मदद करेंगे, जिससे बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी सहित विशेष शिक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाएं मिल पाएगी। राज्य सरकार और केंद्र की एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत अब किसानों बागवानों को छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे प्रदेश की फल और सब्जियों की पैदावार को जल्द खराब होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही 2 से 3 महीनों तक बाजार में अच्छे मूल्य मिलने तक स्टोर किया जा सकेगा। ये जानकारी देते हुए उद्यान विभाग के निदेशक सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत 10 से 30 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोर किए जा रहे हैं।
1: लोगों को छोटे छोटे जैसे स्टोरेज कोल्ड स्टोर उपलब्ध हो जाएंगे, तो लोगों को एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस होता था, 2-4 दिन जब सड़कें खराब हो जाती

0: अपनी गोभी की पैदावार मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की आर्थिकी प्रभावित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 18 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद करपट गांव का मुख्य पुल और संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। गांव का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है और अब किसानों के सामने अपनी तैयार फसल मंडियों तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। गांव के किसानों की हजारों गोभियों की बेटियां नदी के दूसरी तरफ फंसी हुई है, जिन्हें समय रहते मंडियों तक नहीं पहुंचाया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल बहाली के लिए भेजी गई LNT मशीनें मौके पर पहुंचते ही खराब हो गई। अब किसान करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर के सहारे नदी पार करते हुए अपनी फसल निकालने को मजबूर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से कमजोर पड़ा मॉनसून आज शाम से एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश के मध्यमवर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मॉनसून सीजन में बीते 3 महीनों के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में औसतन 10% तक कम बारिश दर्ज हुई है। इस दौरान लाहौल स्पीति जिले में 57%, हमीरपुर में 35% तथा मंडी में 17% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गूंज पहाड़ों की।

0: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गूंज पहाड़ों की आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: तेरा हंसना बोले क्या कमलो दिल कर दारुदा।
0: परदीप परदेसी की आवाज में आप सुन रहे हैं इस हिमाचली गीत को।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धीरे शर्मा की आवाज में। तो आइए एंजॉय करते हैं इस हिमाचली गीत को।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं जय हिंद गीतमाला।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत के साथ। फिल्म है दिल चाहता है। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में अभी सैनिक भाई सुन रहे थे दिल फिल्म का गीत। समीर ने गीत को लिखा था, आनंद मिलंद का संगीत था। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: दिल क्या करे। सैनिक भाई सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला का गाया हुआ ये गीत सुन रहे थे। जतिन ललित का संगीत था और समीर के बोल थे।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा खेल के दौरान होने वाली चोट और उपचार। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित डॉक्टर साहिल कुमार अस्थि रोग विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391।

नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01892224391। तो फ़ोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 30 अगस्त 2026, सूचना समाप्त हुई। कुछ कुछ होता है सैनिक भाइयों, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत। समीर ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और मनप्रीत कौर की।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सैनिक भाइयों, सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए थ्री इडियट्स फिल्म के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। सुखी, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि आज है शनिवार और शनिवार को हम करते हैं बातचीत माँ की पाठशाला पर। माँ की पाठशाला में आज हम बात करेंगे नारी के सम्मान और आत्मरक्षा के महत्व पर। तो सखियों, माँ की पाठशाला वो है जिसमें माँ द्वारा बच्चे को जीवन के अच्छे संस्कार, व्यवहार, सही गलत की समझ देने की पाठशाला होती है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। बच्चा बोलना, व्यवहार करना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना और जीवन के सही फैसले लेने में अपने परिवार से ही सीखता है। इसलिए घर को बच्चे की पहली पाठशाला और माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका या टीचर कहा जाता है, क्योंकि बच्चा माँ से बहुत कुछ बोलना सीखता है, बहुत कुछ करना सीखता है। तो सभी कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और इंजॉय भी करते हैं।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सखी इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं सुनो सखी। तो अंतराल से पहले आपने गीत सुना, मम्मी मम्मी और डैडी डैडी हो जाओ शुरू रेडी। तो बिल्कुल सही बात है, ज़िंदगी में ये समय भी आता है जब हम लड़का या लड़की खुद के लिए पसंद करते हैं और पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि अब रेडी हो जाओ, हमारा समय आ गया है शादी करने का। जी हाँ, हम अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि ये पढ़ा भी सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बच्चों के सिर पर भी होती हैं। और बच्चों की जिम्मेदारियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है पढ़ाई की। उन्हें पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छा इंसान बनना होता है, फिर ही जाके शादियाँ होती हैं, तभी अच्छा लगता है। तो खैर, हमारी बातें यहाँ से वहाँ होती जाती हैं और जब बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो हम अपने टॉपिक से भी भटक जाते हैं और फिर से बात माइंड में आती है कि अरे आज तो हमें माँ पर बात करनी है। माँ की पाठशाला आज हम लेकर आए हैं, तो बहुत कुछ माँ की पाठशाला से सीखते हैं और माँ से खैर सीखते हैं। तो माँ की पाठशाला में आज हम नारी के सम्मान और आत्मरक्षा की सखी बात करेंगे। नारी का सम्मान और आत्मरक्षा बेहद ज़रूरी होती है। ये काम केवल परिवार की जिम्मेदारियां संभालना नारी का काम नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ और भी नारी के काम होते हैं, जैसे समाज और देश के विकास में बराबर की भागीदारी देना भी नारी के कामकाज में ही शामिल होता है। आज के समय में सखियों, नारी सम्मान और आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जा सकती है कि वहाँ महिलाओं को कितना सम्मान और कितनी सुरक्षा मिलती है। जी हाँ सखियों, नारी सम्मान के महत्व की बात हम कर रहे हैं तो महिलाओं की बात खासकर हो रही है। जोर भी हम महिलाओं पर देते हैं क्योंकि एक माँ भी महिला ही होती है। महिलाएं जो होती हैं समाज का आधा हिस्सा होती हैं। उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान, शिक्षा, अवसर मिलना हमारा मौलिक अधिकार है। जब हम और हमारी महिला बहनें आगे बढ़ती हैं तो पूरा परिवार, पूरा देश तरक्की करता है। साथ ही साथ जब हम और हमारी महिलाओं को ये चीज़ें मिलती हैं तो माहौल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा आत्मबल भी बढ़ता है, जिससे हमारी महिला बहनें आगे बढ़ती हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करती हैं। नारी जितनी शिक्षित होगी उतनी ही जागरूक भी होती है और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करती है। जी हाँ सखी, इसी तरह से होता है ना, क्योंकि नारी के शिक्षित होने का बहुत सारा समाज को फ़ायदा हुआ है और जब वो पढ़ती लिखती है तो घर पर अपने बच्चों को भी आसानी से पढ़ा लेती है, नहीं तो पढ़ाने की दिक्कत हो जाती थी और बहुत सारे बच्चे पढ़े बिना ही रह जाते थे। और माँ की तो कोई बात, कोई बराबरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि माँ बहुत ही एक प्यारा सा शब्द है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत कुछ उसमें समाया रहता है। माँ की यादें हम सभी को आती हैं। माँ के जाने के बाद ही समझ आता है कि कुछ खालीपन हमारी ज़िंदगी में रह गया है, वो भर नहीं रहा है। इंसान हंसता है, मुस्कुराता है, हर काम काज करता है, लेकिन जो याद उसके मन में माँ की होती है वो

किसी कोने में सिमटी रह जाती है। दिल के किसी कोने में हमेशा एक आवाज़ रहती है, माँ होती तो आज कुछ और बात होती, माँ होती तो आज अच्छा होता, सब अपनी अपनी जगह पर होते और सबको माँ का प्यार मिलता। कहीं ना कहीं बच्चे माँ के प्यार से भी वंचित रह जाते हैं, वो बच्चे जिनके जीवन में माँ नहीं है। खैर, हम तो दुआ करते हैं कि जिनकी माएँ हैं उनके पास, उनकी कदर कीजिए। समय रहते अपने माता पिता की कदर करना बेहद ज़रूरी होता है। उन्हें खूब सारा प्यार दे, खूब सारा समय दे, खूब सारी उनकी सेवा करें, क्योंकि समय जो है लौट कर वापिस नहीं आता है। तो आइए थोड़ा सा अपनी बातों को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं और माँ से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा गीत मिलजुल कर सुनते हैं।

जी हाँ सखियो, माँ होती ही अच्छी है, बहुत प्यारी सी होती है, और यूँ कहें तो वो बहुत किस्मत वाले हैं जिनकी माँ मौजूद है। तो माँ की मौजूदगी को वैसे तो हम सामान्य समझते हैं, अब एक छोटी सी आवाज़ सुनने के लिए भी कभी कभी दिल तरस जाता है। ऐसा लगता है उस समय काश वक्त पीछे लौट जाता, हम हर बात ध्यान से सुनते, उनके साथ थोड़ा और वक्त बिताते और उनके जाने से पहले एक बार और कह पाते, माँ आप मेरे लिए बहुत खास हो। जी हाँ, वैसे तो माँ की इम्पोर्टेंस हम सभी की लाइफ में बेहद होती है, पर होता है ऐसा कि जब हमारे पास होते हैं तो हम कद्र नहीं करते हैं और जाने के बाद बहुत सारी कद्र करते हैं। तो श्रोताओ, समय रहते समय को संभाल लीजिए, समय बार बार हाथ में नहीं आता है, हाथ से छूटता ही जाता है। तो आइए फिर से हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, महिलाओं की यानी नारी के बारे में आज हम बात कर रहे थे। तो महिला बहनों की आत्मरक्षा की बात करें तो आजकल के समय में बहुत सारी अश्लील वारदातें हमारी महिला बहनों के साथ होती रहती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शारीरिक सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। आत्मरक्षा की तकनीकें, मार्शल आर्ट, कराटे महिलाओं को किसी भी अचानक होने वाले हमले से संकट के समय अपनी रक्षा करने के काबिल बनाती है। साथ ही साथ आत्मरक्षा की तकनीकें सीखने से भीतर का डर खत्म हो जाता है और बाहर कहीं भी यात्रा करने में, बाहर कहीं भी आने जाने में महिला बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जी हाँ सखियो, होता है ना आप सभी के साथ भी ऐसा? समय के बदलाव से आज हम आज़ादी से घूम फिर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। आत्मरक्षा की तकनीकें ये केवल शारीरिक बल नहीं है बल्कि मानसिक रूप से हमें मजबूत भी बनाती है और संकट के समय घबराने की बजाय सही फैसला लेने की हिम्मत भी हमें देते हैं। जी हाँ सखियो, अभी इन्हीं बातों के साथ साथ, जानकारियों के साथ साथ घड़ी की सुइयों की तरफ ध्यान गया तो लगा ऐसे कि समय हो गया है अब थोड़ा सा रसोई घर में चलने का। हमारी बहनें तो पहुंच चुकी होंगी क्योंकि खाने का वक्त हो गया है और बहुत सारी बहनें इस समय अपने किचन में होंगी, बहुत सारी सखियों ने अपने किचन में ही रेडियो सेट ऑन कर रखा होगा। तो खाने बनाने का समय है, थोड़ा सा हम भी खाने से थोड़ा सा अलग चीज़ बनाते हैं, कभी कभी चटपटा, कभी कभी मीठा खाने को मन करता है ना। तो आइए जल्दी से बनाते हैं ढोकला। ढोकला बनाने के लिए एक बर्तन में जल्दी से पानी ले लीजिए और पानी में नींबू डालकर रख ले यानी निचोड़ ले। थोड़ा सा हमें नींबू पानी बनाना है, वो भी तीखा सा। उसमें नमक डाले, थोड़ी सी हींग डाले और चीनी डाले। कई बार क्या होता है नींबू के साथ चीनी घुलती नहीं है तो उसका पाउडर बनाकर भी हम डाल सकते हैं या नींबू की चाशनी भी डाल सकती हैं या चीनी को अलग से घोल कर उसमें मिक्स कर सकती हैं। अब हरी मिर्च को हम मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके या कूट कर भी इसमें डाल दें। थोड़ा सा अदरक कस कर किया हुआ या पीसा हुआ इसमें डाल दें और नींबू पानी बनाकर तीखा सा रख लें। अब धीरे धीरे करके नींबू पानी जो हमने बनाया है उसे हमने डालना है बेसन के बीच में। बेसन ले एक बर्तन में और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके उसे मिक्स करें और 10 मिनट रहने दें। अब एक बर्तन में कढ़ाही में गर्म पानी गर्म करें क्योंकि हमने जो है अपना ढोकला इसी में बनाना है। अब स्टैंड तो हम सभी के घर पर होता है ना, अब वो स्टैंड जो है कढ़ाई में रख दें और जो हमने बैटर बना के रखा है उसमें इनो डालें एक पाउच और अच्छे से फेंट लें, अच्छे से मिक्स कर दें। अब बेकिंग

बर्तन ले और बैटर उस बर्तन में डालकर कढ़ाई में स्टैंड पर ढक कर रख दे। अब पैन में तेल गरम करें, एक अलग पैन ले, एक अलग बर्तन ले, उसमें थोड़ा सा तेल डालें, उसमें हींग डालें, हींग का छौंक लगाएं और राई के दाने डालें। राई के दाने चटकने पर हरी कटी मिर्च डालें लंबी लंबी करके। अब कड़ी पत्ता डालें, थोड़ी सी चीनी बारीक डालें, पिसी हुई डालें, नींबू निचोड़ कर डाल दें उसमें और थोड़ा सा हल्का उसे गर्म कर लें। और गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर ले। 10-15 मिनट पकने के बाद टूथपिक की सहायता से हमें अपना बैटर चेक करना है कि वो अंदर से पक गया है या नहीं। सिम आंच पर पकाएं और जब वो आपको लगे कि आपकी टूथपिक्स के साथ चिपका नहीं है, यानी पक गया है, तो अब क्या करना है, अब उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। कुछ समय के बाद बेकिंग बर्तन से उसे निकाल लेना है, उसके पीस करने हैं और जो हमने तड़का पहले नींबू पानी वाला तीखा सा बना के रखा था वो उसके ऊपर डाल देना है। कुछ समय पड़ा रहने दे, यानी कि 10 की मिनट आप इंतज़ार करें, क्योंकि खाने का तो सबका मन करता है लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार हर चीज़ के लिए सखियों ज़रूरी होता है। इंतज़ार का फल भी मीठा होता है और पकवान भी आपको स्वादिष्ट मीठा सा लगेगा। 10 मिनट होने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट से ढोकले का पीस उठाना है और टेस्ट करना है कैसा बना है ढोकला। तो आप बनाने की करें तैयारी या लगाएं स्वाद ढोकले के, और चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।

सगे मन तो नहीं कर रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन क्या करे, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आपसे ज़्यादा बातचीत करने का। तो इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है सुरेंद्र कपूर ने। प्यारी सखियो नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की 4थी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजक्शकियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजक्शकियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर की बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है खत में सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था, आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कलाकार राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे। क्या तितली पकड़ में आती थी? वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है सब लोग अपने अपने ज़माने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे ज़रा बताइएगा हमें।

एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है। हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं, ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं। आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो ज़रा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ न होना। एक और आगे इन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के ज़माने में भी। तो ज़रा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को? याद कीजिए और हमें बताइए। अब ज़रा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज़ मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियाँ तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबुओं में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है। कितना भी समय बीत जाए, खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधले नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे। तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अभी हम आपको कागज़ के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

सुन रहे थे आप कागज के फूल फिल्म का गाना, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, गुरुदत्त और वहीदा रहमान। श्रोताओं ने सही बताया है और गीता दत्त की आवाज़ थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी

श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहेली बूझिएगा। फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नज़र के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियाँ अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ तितली से प्यार तो है, हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। जब वो फूल पर आकर बैठती हैं तो हम उसे निहारते ज़रूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है। बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़ें। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन। चाहे तो आप गीतकार का नाम भी पूछ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बच गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप भारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं, और तब तक आपकी टिप्पणी आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई, आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था, बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं ख़त लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फ़ोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये। तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, संजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं? बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुलजार के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। ज़रा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतज़ार है। कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताज़ा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि ख़त में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा, क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है। पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत पसंद है वही नहीं मिलती? बहुत बार अब देखो ना, हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते। बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज़ खिलते हैं, पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है, और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्मस्थान, तब वहाँ तितलियाँ बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है, भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताज़ा कर दी आपने, प्रेम पत्र

जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला। पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपने खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं। भाई ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से एक ये

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतज़ार पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का नाम था। हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से, इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिक, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफ़र, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियाँ हमें प्रभावित कर रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियाँ, काले धुएँ शोर के

नीचे। मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको बूझना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट, ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज़ थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था, इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए और ज़रा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही पूछा। और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, अक्सर आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफ़र का ये सुरीला सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

साथियों, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: कैसी है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने? मैंने? नहीं तो?

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज़्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज़्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011 23

0: 01123081809 और 01123112113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +9779851316807 +9779701075000 और +9798132611। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142849005। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा, एक रिपोर्ट।
2: श्री पेजेश्कियन ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेश्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
4: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
5: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
4: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी

0: तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 46 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। उन्होंने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डल थोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जल उपचार परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूषित पानी के सेवन से कई प्रकार की बीमारियों की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत लोगों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए पंचायतों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं व महिला मंडलों को पौधरोपण और वनों के संरक्षण से जोड़ने के उद्देश्य से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बड्डल थोर में पशु चिकित्सालय खोलने का ऐलान भी किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिवस महान हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस लोगों को खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी लोगों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान पर बिताने और खुद को स्वस्थ रखने का आह्वान किया। पेश है ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस एक घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया

0: में लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
0: खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है।
2: शिमला पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी साझा करते समय एहतियात बरतने की अपील की है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में एएसपी मेहर पंवर ने कहा कि विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों द्वारा धरना प्रदर्शन करने की भ्रामक खबर पोस्ट करने के मामले में आरोपी व्यापारी करमचंद भाटिया को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं बल्कि नियमों के अनुसार ही की गई है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है।
3: विधानसभा के दौरान इस तरीके के तथ्य पेश किए गए जिससे एक रीजनेबल जो है खतरा था डिसहार्मनी होने का, पब्लिक डिसऑर्डर होने का, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। सबसे अपील भी है कि थोड़ी जिम्मेवारी से ही पोस्ट की जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग हर तरीके की चीजें डालते हैं, तो सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर आप ये जो हमारा फ्रीडम है इसको उससे भी बैलेंस करना जरूरी है कि हमारे समाज में जो है एक नियम कानून जो व्यवस्था है वो बरकरार है।
2: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस के लिए संशोधित मूल्य निर्धारण ढांचा, इसके उत्पादकों के ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ताओं को सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कोई खास वृद्धि न वहन करनी पड़े। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा ढांचे के अंतर्गत बायोगैस 6:30 बजे। नमस्कार।

0: कई महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। जिले की जीवन रेखा माने जाने वाले संसारी नाला, किलाड़, थिरोट, तांदी मार्ग पर जहालमा नाला के ऊपर करीब 2,50,00,000 रुपए की लागत से बने 120 फुट लंबे स्थायी वैली ब्रिज का लोकार्पण हुआ। उपायुक्त किरण भड़ाना ने पुल का उद्घाटन कर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। फिलहाल पुल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है, जबकि तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू होगी। 26 मई को भारी बारिश और भूस्खलन से पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। नए पुल से स्थानीय लोगों, किसानों, बागवानों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों का भी विशेष उत्साह रहा। जिस्पा में 2 दिवसीय लाहौल टूरिज्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोक संस्कृति, तीरंदाजी और पारंपरिक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां हुई। लाहौल, किन्नौर, स्पीति, लेह और जांस्कर के कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुत कर आयोजन को बहुरंगी बना दिया। वहीं केलंग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। शोभा यात्रा, पारंपरिक नाटी, लोक नृत्य, लोक गीत, हस्तशिल्प और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार बनाया। समापन समारोह में इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित सहित कई कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। त्रिलोकीनाथ में राज्य स्तरीय पौरी मेला 2026 तथा काजा में पारंपरिक लदारचा मेले का भी शुभारंभ हुआ। दोनों आयोजनों में धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और सामाजिक सौहार्द की झलक देखने को मिली। लदारचा मेले में विभिन्न गोंपाओं के लामा, स्थानीय लोग, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और सांस्कृतिक दल शामिल हुए। इन मेलों में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को भी मंच प्रदान किया। हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर केलंग में राज्य स्तरीय साहित्यिक समारोह आयोजित हुआ। साहित्यकारों और शोधकर्ताओं ने उनके ग्रामीण विकास, भूमि सुधार व आधुनिक हिमाचल के निर्माण में योगदान को याद किया। बहुभाषी कवि सम्मेलन में प्रदेश भर के साहित्यकारों ने लोक संस्कृति, प्रकृति और पहाड़ी भाषा पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की। लाहौल की देव संस्कृति भी इन दिनों चर्चा में रही। आराध्य देव राजा घेपन की ऐतिहासिक मलाना यात्रा के दौरान माता हिडिम्बा और 18 नाग देवताओं की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। मलाना के ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार देवताओं और देवलुओं का स्वागत किया। यात्रा के दौरान अतिथि सत्कार और देव परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। बाद में रोपसंग और तांदी डाइट में देव मिलन और विदाई के भावुक दृश्य भी सामने आए। इसी क्रम में मंडी के सुनारू से देव मार्कंडेय ऋषि 18 वर्ष बाद त्रिलोकीनाथ धाम पहुंचे। 1,000 से अधिक देवलुओं और श्रद्धालुओं के साथ हुई ये यात्रा लाहौल और मंडी की साझा देव संस्कृति का प्रतीक बने। खेल के क्षेत्र में भी जिले ने गौरव हासिल किया। रानी का पंचायत के कीर्तिंग गांव के युवा खिलाड़ी ऋषिक ने बिलासपुर के लुहणु मैदान में जूनियर राज्य स्तरीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उनकी उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। स्वतंत्रता दिवस पर केलंग और काजा में देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। केलंग में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की। इसी के साथ लाहौल स्पीति जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी। लेखक थे सुरेंद्र कुमार और वाचक स्वर था राजकुमारी चंदेल का। आकाशवाणी का
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मुरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुना दूँ आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्रगण। बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार। नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे हैं, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं, ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों, हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण। फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव जत्तोरानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वच कामले, सुषमा वच कामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सकें। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज़ थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में। तो आ फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्णनगर टीवी टावर्स से। और हमारे ये श्रोता हैं छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव जालना काठियावाड़ से सुलेमान, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत, ये

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं।
2: अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
1: क्या देख लिया तू है? है?
2: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
1: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
2: क्या मिल गया?
1: ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
2: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे?
1: हाँ और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ।
2: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
1: तुम क्या समझोगी? अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
2: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
1: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
2: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
1: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
2: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
1: क्या कहा तुमने? तुमने मुझे रावण कहा?
2: नहीं नहीं मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही हूँ। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो बैठ कर अखबार।
1: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया।

0: रेखा रेखा भाई सुनती हो?
1: अरे क्या है क्या है?
0: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
1: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
0: फुर्सत नहीं क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी?
1: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया, बर्तन कौन साफ करेगा? तुम्हारा चाचा?
0: क्या कहा तुमने?
1: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
0: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। पर चाचा जी
1: अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
0: अरे अरे अरे आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
1: क्या
0: अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
1: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
0: भूल गई खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है।
1: अब करना क्या है वो बोलो।
0: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
1: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रही हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
0: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
1: जी गलती हो गई बस।
0: गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
1: तो गलती सुधार लो।
0: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
1: बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस।
0: साफ सफाई कौन करे, मैं करूं?
1: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
0: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
1: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं?
0: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
1: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हा?
0: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
1: पति नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
0: सीधी एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला।
1: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है मेरे नहीं।
0: हाँ और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
1: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
0: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
1: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
0: जी और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
1: कहाँ जा रहे हो?
0: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट कूपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
1: अरे मेरी चप्पल उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं।
0: अब रहने दो मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
1: तुम्हारे ही नहीं दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
0: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
1: चप्पल टूट गई है।
0: टूट गई? किसने तोड़ी?
1: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
0: अच्छा भाई टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
1: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं क्योंकि पूजा के लिए ले जाएगा।
0: अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है, चलो जाने दो। मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
1: वो
0: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
1: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो उधर।
0: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
1: कल रात तुम ही ने वहाँ उतारे थे।
0: अरे भाई इसके फीते कहाँ गए भाई?
1: ओहो अब मुझे क्या मालूम,
0: कल तो थे ना।
1: चूहा ले गया होगा।
0: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
1: क्यों तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो? तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
0: तुमने मुझे दीवाना कहा है?
1: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
0: लेकिन

0: इशारा तो मेरी ही तरफ था ना। मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
1: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मौसा। दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, मनोहर लाल की धर्मशाला।
0: मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई, इस बूट का फीता कहाँ गया?
1: जाओ बाजार से खरीद ला, जाओ।
0: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
1: नंगे पांव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
0: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
1: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
0: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा? बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
1: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो?
0: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पक पक है।
1: अच्छा, तो क्या
2: पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई ताजी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है, टाइम हैज चेंज।
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना, मुझे नहीं समझ में आया।
2: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं।
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
2: मौसा जी,
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
2: नहीं।
0: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे।
2: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं।
2: हाँ, लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
2: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को।
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे।
2: आप मुझे बताइए, मौसी बढ़ गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी।
2: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
2: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए।
0: किसके बारे में?
2: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ।
0: क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
2: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी।
0: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
2: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बस चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह।
0: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प रेखा।
1: अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए। अरे लीना, तुम क्या हुआ?
0: अरे इस लीना पर माता जी आई है।
1: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
0: इस पर पिताजी आए हैं।
1: तुम कब आई लीना?
2: अभी थोड़ी देर पहले।
1: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है।
2: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस।
1: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना?
2: वीरेंद्र, वीरेन, वीरेन, वीरेन, वीरेन।
1: क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है।
1: लीना ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है।
2: पति? गधा है गधा।
0: मालूम होता है लात खाकर आई है।
1: तुम बीच में ना बोलो जी।
0: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना? अरे लीना ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पली पहन कर चला जाता हूँ।
1: अरे ये क्या पागलपन है,
0: थोड़ी छोटी होती है बस।
2: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
0: गुलाब जामुन, रस मलाई।
2: मुझे नहीं खानी।
1: इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
0: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं।
1: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
0: लीना, लीना जरा समझाओ।

0: अरे चाचा जी, हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं, चार
1: दो
0: चार।
1: मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है।
0: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है, जानती होली ना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे,
1: तभी
0: मेयर।
1: से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है।
0: चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है।
1: तो कोई नई बात नहीं है, लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
2: अरे अरे कोई दरवाजे तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना।
3: अब मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
4: नो,
3: एकदम अच्छा है बाबूजी, गरमा गरम है।
4: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो, लो मैं।
4: इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
2: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
4: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
2: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
4: अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
3: हाँ
4: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
3: हाँ क्यों?
4: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
3: कितने का दूं बाबूजी?
4: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
3: वहाँ बैठने का 10 रुपया?
4: हाँ हाँ,
3: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
4: नॉनसेंस। चलो किसी होटल में चलते हैं।
2: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
4: ऑल राइट, एज यू विश।
5: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
4: क्या है?
5: कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है।
4: ए भाई, आप क्या चाहते हैं?
5: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
2: ये आपने कैसे समझ लिया?
5: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
4: मगर आप हैं कौन?
5: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
4: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
5: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
2: आप क्या चाहते हैं?
5: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
4: स्याही खत्म हो गई?
5: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
2: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
5: मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
4: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
5: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेन, इफ यू डोंट माइंड।
4: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
5: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
5: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है, उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है, नए वातावरण में वह अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है, उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
4: और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना?
5: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे वो अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
5: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
5: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
5: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं।
2: एक आइडिया, बस आप यूं दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
5: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
4: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।

0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
1: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली। लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
2: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
2: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
2: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
2: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
1: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
2: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
1: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
2: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
1: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
2: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
1: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
2: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
1: रियली?
2: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
1: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
2: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। That's why I love you, darling। तुम भी कहो ना I love you। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
1: अरे इसमें क्या बोलना?
2: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
1: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। We are not teenagers, we are matured।
2: Okay, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
1: Please, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
2: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी?
1: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
2: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
1: बेकार की जिद मत करो।
2: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
1: ना।
2: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
1: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
2: All right, let us compromise। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
1: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
2: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
1: चलो अब हम चलते हैं।
2: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
1: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
2: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
1: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you।
2: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
2: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
3: लीना लीना, ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
2: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहां से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
2: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
2: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
2: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
4: दोनों पागल हैं।
3: तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं।
4: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
3: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
4: मेरे पास कहाँ होगा।
3: अब कहाँ जा रही हो भाई?
4: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
3: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
4: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
5: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है। मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग

0: मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कांगड़े।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
0: ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों की, 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
5: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
6: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।
7: जैसे तू है पास मेरे,

0: क्या बात है, क्या बात है। अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर।
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज़
0: जी
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माँ ने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो, रेडियो, क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने, और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज़ थी, और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी
1: जी।

0: आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है, बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर से घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज़, और आवाज़ तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही, तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेंबर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का यू नो आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था, बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था ये आवाज़। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूज़िक कैसे सिखाएं, क्या करें, स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाइए, वहाँ से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
1: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
0: जी।
1: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था।
0: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
1: 6th क्लास में?
0: 6th क्लास
1: पैर वैर पहुंच रहे थे?
0: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे, वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
1: भाग जाएगी,
0: चाबी चुरा के,
1: एक्सीडेंट का डर नहीं।
0: हाँ तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: अरे भगवान,
0: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। हाँ। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, वहां पे बाइक घुमा रहे थे, मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं, बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम 6th में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी

0: होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12, 13, 14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सच चीज़ें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज़ पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
1: तो पैर पहुंचने लगे।
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम 6th स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो भाई 6th से लेके 8th 9th तक, मतलब 12th तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी। और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8th से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा दो। बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, काफ़ी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, आ गया तो चलाने दो। लेकिन बिकॉज और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज़्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है। तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पर गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन पे फोकस
0: है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट यू नो ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ़ शी इज़ गुड एट म्यूज़िक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिस पे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, बहुत लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये ज़रूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट। और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते अगर होते तो।
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही हैं, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था। क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले हैं आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफ़ी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि कभी, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूज़िक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक। और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहाँ भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11th 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ।
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है। मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के ज़माने में जिस लड़की का बायोडाटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे।
1: मतलब इतनी काबिल,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे। और वहाँ से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है आई आई टी,

0: था। तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है,
0: नहीं है, नहीं।
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहाँ।
0: करेक्ट। तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था। सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर। और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत मतलब एक ही सुर में चलने वाला टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है, और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे। तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी। सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स, और तब जो आज मेरे दोस्त हैं तब वो वहाँ के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के। आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले। तो इट वॉज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो, ये समझ आया।
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था। और पता नहीं हमको बचपन से हमेशा से हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे, या अच्छा। तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे।
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि हाँ। इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ही।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे।
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सुंदर

0: बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा ज़माना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई थिंक
0: सी एस आर
1: हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा ज़माना जब आया, जब हम सेवन्थ एट्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहाँ सुन रहा है, वहाँ नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज़ बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें।
0: अच्छा,
1: खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती हैं, आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में आपने?
1: पटना में आई वाज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफ़ी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वॉज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो माफ़ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ़ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे, हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
0: मेरे माँ बाप को 12th
1: के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड।
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ।

0: ट्वेल्थ के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहाँ भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और
1: बाबा
0: वहाँ पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुँचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहाँ आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहाँ के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माय सिंगिंग वाज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेंढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था। हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्ज़ा और बर्गर के फोटोज़ और वीडियोज़ देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडोनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्ज़ा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल दो अंग्रेज़ी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में ये था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी
1: अच्छा
0: अंग्रेज़ी इसको कैसे आती है। और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए। वो स्ट्रगल मेरे लिए ज़्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए हैं, अब नहीं सुनते हैं,
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला आ रहा
0: इतना
1: है।
0: बड़ा। और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, बट वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं
0: नहीं
1: होता,
0: होता है, करेक्ट
1: बाकी तमाम चीज़ें भी
0: करेक्ट
1: धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज़ पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहाँ तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को यू नो जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। आप तब आप जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
0: तो
1: बहुत बड़ी बात है ये।
0: जी, तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला यू नो वो तो मेरे लिए मुश्किल था। वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको, अब तो
1: अच्छा,
0: आउट हो चुके हैं।
1: नहीं लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने, और
0: हाँ
1: अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट,
1: वो संघर्ष क्या था? क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात
0: बात
1: नहीं
0: नहीं
1: करता
0: करता है।
1: कि, लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है, और हम तो हम करके बात करते हैं, तो चलो इसको

0: छुपाते हैं, और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव यू नो आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी मान चुके
0: ये भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहाँ से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज़ नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज़ नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो, मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहाँ से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सकता, हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए बेटी बचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: इतना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
1: जी,
0: उनके लिए थोड़े से में इसका अर्थ भी बता दें।
1: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिकारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
1: बहुत प्रसिद्ध
0: जी।
1: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: जो गंगा मैया में भी होता है, उसमें कहानी भी यही है,
0: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
1: उसमें भी यही कहानी है
0: जी।
1: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
0: कितना मार्मिक है
1: ये, हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई एम वेरी लकी।
0: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
1: है
0: जी, बिल्कुल।
1: और ये बहुत पेनफुल है, जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये
0: ख्वाब होता है,
1: ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
0: जी
1: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
0: बहुत बड़ी बात बोली है,
1: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
0: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
1: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग, है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
0: वो भी
1: वो है जीवन।
0: हाँ।
1: जीवन वो है,
0: बिल्कुल,
1: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है, ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
0: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
1: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
0: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
1: पूरी
0: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया
1: और
0: था।
1: वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे, यू नो, किताबी बच्चे, किताबी बच्चा थे हम, रोना सबके

0: हमने रोना कमजोरी की निशानी,
1: तो
0: पता नहीं
1: संभाल लिया।
0: कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये चीज सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली आई वॉज, हम कभी नहीं खुल पाते थे। आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी अपने
1: अपनी कमजोरी
0: डिसीजंस में।
1: दुनिया के सामने
0: कमजोरी
1: नहीं आने
0: दुनिया के
1: देना।
0: सामने नहीं आ सकती है चाहे कुछ भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए,
1: अंदर बहुत तूफान चल
0: अंदर
1: रहा है
0: तो
1: लेकिन
0: तूफान,
1: ऊपर सब कुछ स्थिर है।
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था। लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में।
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा
0: नहीं,
1: कि
0: बिल्कुल
1: एक
0: भी
1: दिन
0: नहीं,
1: दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने।
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके। और
1: हाँ
0: तब हमको लगा था ठीक है अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई। तो वो मेरा मन रख रही हैं, आए हम भी छोटे थे 17-18 साल के थे, मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बींग, तो वो कर रही हैं जो उनको करना है, पर जो वो कह रही हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। बोले ना सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है, मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था। तो उसके बाद लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि फिनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार।
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए,
0: जी
1: वहां से लौटने के बाद
0: हाँ
1: मन का बांध टूटा?
0: बहुत, स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है,
1: अच्छा पहले ये तस्दीक हो
0: पहले
1: गई।
0: था हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से। तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहाँ पे, अब तो नहीं है
1: अब नहीं है,
0: स्टूडियो नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम
1: कॉटेज
0: होता
1: था।
0: था, कॉटेज। तो हम वहाँ से निकले, वहाँ पे कैमराज होते थे, वहाँ से भागे दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, आपने कभी देखा हो एक
1: बिल्कुल,
0: कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं, जो राज कपूर साहब की
1: यस,
0: फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस
1: वहां पर
0: प्रॉपर्टी रूम
1: है।
0: में। यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा, घुसे कोने में गए और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है,
1: हे
0: ये
1: भगवान,
0: स्थिति थी।
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनी वन, कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम
1: मतलब
0: दुखी
1: एक
0: हैं।
1: अकेले कमरे में
0: अकेले
1: अपना
0: कमरे में
1: पूरा
0: रो
1: दुख।
0: के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ
1: गजब
0: लाइफ है।
1: गजब।
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल, और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे मेरे मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार, और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी, क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, लड़कों से तो दूर क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर, बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय। तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में, तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे। तो जब भी हम स्कूल जाते थे तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे। वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे की बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी, वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं, सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि यार बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं, इट वॉज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट।
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने
0: वापस
1: माँ बाप को
0: लौटना,
1: बताना।
0: बताना, उनके गोद में महीनों रोना, महीनों, क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि रास्ता, ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे, हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो क्वेश्चन हमें खींच के लेके चला गया, करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल

0: की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई। वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी। अब तो
1: बीच में
0: शीज
1: तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि
1: अब क्या
0: करना
1: होगा,
0: क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना, जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, 12th के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया।
0: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कम कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए हैं। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी।
0: ओ माई गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वॉज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वॉज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाता
1: सब
0: है,
1: मुड़ के देख
0: सब
1: रहे
0: मुड़ के देखते हैं ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है।
0: कलाकार है ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है,
1: हाँ,
0: उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया है,
1: वो पर्दे के पीछे
0: वो
1: है।
0: पर्दे के पीछे है। जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं,
1: और वो ओझल है।
0: वो ओझल है, वो कहीं भी नहीं है। बट ये सपोर्ट होता है, वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें। ये बहुत बड़ी बात है,
0: हाँ
1: ये बहुत प्यारी बात है।
0: जी
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका
1: उसके भाई
0: सैक्रिफाइस
1: बहनों का
0: होता है,
1: कितना बड़ा
0: सबका
1: योगदान होता है।
0: सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं,
1: हाँ,
0: 2-3 साल के अंतर पर
1: इससे
0: हैं,
1: कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हम उसको, हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि
1: उफ,
0: तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज़्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियाँ हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वहीं होती थी और स्माइल के साथ वहीं रहती थी, और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती हैं जिनकी, जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे, तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था हमको आसपास। अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी

0: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है।
1: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज़ से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो। तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
0: दीपाली, हम इतने जज्बाती मूड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
1: अगर आप बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं।

0: रहा है।
1: क्या बात है, मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है, जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है, जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे

0: हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड है।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झपारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास और कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन

0: में दो गुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाढ़ के बाद भारत सरकार की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषयों से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सेवा से संबंधित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर महाहड़ताल की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी के श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a 2-day visit. The Prime Minister is visiting Tashkent at the invitation of President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said in recent years, India-Uzbekistan's strategic partnership has seen significant advancement. Prime Minister Modi said he is looking forward to having discussions with President Mirziyoyev of Uzbekistan on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy and on advancing the shared visions of Vikasit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626, while over 2,000 people remain missing. Police have recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Golkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Thading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में नया रास्ता फिल्म का ये भजन अभी आपने सुना, संगीत एन दत्ता का था। लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म की ये भक्ति रचना। आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: शिवहरि की बनाई तर्ज पर सिलसिला फिल्म की भक्ति रचना भी आपने सुनी। आवाज लता मंगेशकर की थी।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्मों से भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में गोपी फिल्म की यह भक्ति रचना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों जय हिंद। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हमें मालूम है आप अच्छे से हैं, और रेडियो की द्वारा जो प्रसारित कार्यक्रम है उनका आनंद आप ले रहे हैं जहां भी हैं। बिल्कुल हमें ये पूरी उम्मीद है आपसे। दोस्तों आज 29 अगस्त है और आज का ये दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन से जुड़ी बहुत सी बातें इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे, साथ ही कुछ अन्य बातें कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपसे हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और खुद को जीनियस साबित करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। और आज इस कार्यक्रम का जो विषय है वो हेलो जीनियस है। शून्य 1-8-9-2-2-2-4-3-9-1 यह स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। फोन नंबर एक बार फिर से सुनिए, 01892224391। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब तक कोई श्रोता हमसे जुड़ते हैं आपको सुनवाते हैं एक गीत।
1: चलता सुलगता सारा समा, चलती सुलगती

0: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम अनीश है।
0: अनीश
1: जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं अनीश?
1: मैं गुलकरी से।
0: जी, आज का जो ये कार्यक्रम है वो हेलो जीनियस कार्यक्रम है। आप कितने जीनियस हैं अभी जान लेते हैं। आपके लिए हम एक प्रश्न यहाँ पूछने वाले हैं, आपको उसका जवाब देना है।
1: हाँ।
0: तैयार हैं आप?
1: हाँ जी।
0: जी, तो आपको मालूम ही है कि 29 अगस्त है आज, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, मालूम है आपको?
1: हाँ जी।
0: ये बताना है कि ये दिन किसकी याद में मनाया जाता है?
1: मेजर ध्यानचंद।
0: क्या बात है भाई, आप तो वाकई जीनियस निकले। क्या करते हैं आप? कौन सी कक्षा में?
1: सातवीं
0: कक्षा में पढ़ते हैं। और आपने देखिए, पहला ही जो सवाल था हमारा उसका बिल्कुल सही से जवाब दे दिया। शौक क्या रखते हैं अनीश?
1: क्या
0: शौक रखते हैं पढ़ने के साथ साथ?
1: पढ़ने के साथ स्केटिंग।
0: स्केटिंग का?
1: जी।
0: तो ये आप सीखते हैं कहीं या अपने आप से?
1: अपने आप से।
0: जी, तो कहाँ तक पहुँचे हैं?
1: अभी तो फिलहाल कहीं नहीं, अभी सीख ही रहा हूँ।
0: अच्छा, अभी सीख रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप जल्दी से सीख जाइए और उसके बाद स्केट करते हुए आप हमारे पास स्टूडियोज में भी आइए, ठीक है?
1: जी।
0: शुक्रिया अनीश कॉल करने के लिए। जुड़ी रही आकाशवाणी धर्मशाला के संग, आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए। जी दोस्तों, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर।

0: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
1: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो जी, लगता है

0: पर टूट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे कार्यक्रम में अगले श्रोता का। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है और हेलो जीनियस आज के इस कार्यक्रम का विषय है। कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों से एक आसान सा सवाल पूछते हैं और हमारे श्रोता बड़ी आसानी से उसका जवाब भी दे देते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ज्योति बोल रही हूँ, हिमाचल से।
0: ज्योति,
1: हाँ जी सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हिमाचल से बोल रहे हैं सर।
0: कहाँ है आपका गांव?
1: कानपुर के आगे, हिमाचल में।
0: हिमाचल में ही है?
1: हाँ जी सर।
0: क्या बात है, कार्यक्रम आपने शुरू से सुना है?
1: हाँ, पहले सुनते हैं सर
0: जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे एक सवाल करते हैं, आपको उसका जवाब देना है।
1: हाँ सर
0: जी, आपको बताना है मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम ने ओलंपिक में जी, लगता है सवाल अभी आधा ही सुना है और ये भाग चुके हैं मैदान छोड़कर। देखिए, ये तो खेल ऐसा ही होता है कि जब खेल में दुश्वारियां आती हैं, मुश्किल आती है, तो मैदान छोड़कर कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो कार्यक्रम में अगली श्रोता हमसे जुड़ने वाले हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं। 01892224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, डायल कीजिए, कीजिए हमसे बात।

0: जी दोस्तों, जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं त्रिशा।
0: त्रिशा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं त्रिशा?
3: नाइन्थ।
0: नाइन्थ में? भाई, आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप नाइन्थ में पढ़ती हैं। जी त्रिशा, बताइए, आज हम इस कार्यक्रम में एक सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने के लिए आप तैयार हैं?
3: जी।
0: ठीक है, आपको बताना है मेजर ध्यानचंद। आपने नाम सुना है मेजर ध्यानचंद का?
3: हाँ, सुना है।
0: जी, तो मेजर ध्यानचंद और उनकी जो टीम है, उन्होंने ओलंपिक में कितनी बार स्वर्ण पदक देश के नाम कराए हैं, बताइए?
3: शायद 3 बार।
0: क्या बात है भाई, आज तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे, बहुत ही स्मार्ट बच्चे आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं। और रियली आपने बिल्कुल सही बात की है और आप जीनियस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी बता सकते हैं ये 3 बार कौन कौन से हैं? ये 3 बार कौन कौन से सन में जीते गए हैं, आप बता सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं। जी
3: दोबारा बोलना।
0: आपने बताया है कि 3 बार स्वर्ण पदक देश के नाम कराए हैं मेजर ध्यानचंद और उनकी हॉकी टीम ने, तो ये कौन कौन से इयर्स में कराए हैं ये बताना है, बता सकते हैं आप?
3: 1-2 का तो पता शायद।
0: जी बताइए।
3: 1968 या 1938।
0: जी हम बताते हैं आपको, ये 1928 में पहली बार

0: एम्स्टर्डम ओलंपिक जब हुए थे पहले, एम्स्टर्डम है ना, और दूसरा लॉस एंजल्स ओलंपिक हुए थे 1932 की बात है, 1932, और इसके बाद बर्लिन ओलंपिक 1936, ये तीन बार हुए थे जिनमें स्वर्ण पदक भारत के नाम मेजर ध्यानचंद और उनकी हॉकी टीम ने कराए थे। ठीक है जी, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी स्कूल में कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई?
1: अच्छी चल रही है।
0: खेलों में हिस्सा लेती हैं साथ में?
1: हाँ?
0: साथ में कोई खेल उसमें हिस्सा लेती हैं आप या नहीं? गेम्स में भाग लेती हैं या नहीं लेते हैं?
1: हाँ, लेती हूँ।
0: कौन से गेम्स में लेते हैं?
1: कबड्डी में।
0: कबड्डी में, क्या बात है, चलिए खूब मेहनत करिए और कबड्डी खेल कर आप देश के लिए भी खेलिए और आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम हो और देश का भी नाम हो। ठीक है, शुक्रिया त्रिशा फ़ोन करने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 0189

दोस्तों आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है। हेलो जीनियस कार्यक्रम का शीर्षक है और इस कार्यक्रम में हम आपसे एक आसान सा प्रश्न पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। युवा साथी उठाइए फोन, डायल कीजिए 01892224391, कीजिए हमसे बात।

जी दोस्तों, कार्यक्रम में हम इंतजार कर रहे हैं अगले जीनियस का। कहाँ गए सभी जीनियस? आज फोन क्यों नहीं आ रहे हैं? 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर डायल कीजिए, कीजिए हमसे बात।

जी दोस्तों, इतने मुश्किल सवाल तो हम नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते लेकिन हम आपके ज्ञान में इजाफा ज़रूर करना चाहेंगे, आपको याद दिला देना चाहेंगे कि मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से भी विख्यात हैं, उनके नाम पर एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में, दिए जाने वाले सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान है ये खेल रत्न पुरस्कार। और आपको बता दें कि 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई थी। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। और ये भी आपको बता देते हैं कि इस पुरस्कार में पदक, प्रशस्ति पत्र और साथ ही 25 लाख रुपए की नगद राशि इनाम में दी जाती है।

जी दोस्तों, अब कार्यक्रम में आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि कार्यक्रम का समय हुआ जाता है। और चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत। युवा साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

6:05 पर सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोजां ग्राइंधियां। 8:00 पेश किया जाएगा विविध संगीत, कार्यक्रम होगा सबरस। आकाशवाणी शिमला से 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम किसान वाणी रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से ही हम रिले करेंगे हिम दर्शन 9:15 पर।

आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर कार्यक्रम युवा भारती रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00।

आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा शाम 7 बजे और रात 11 बजे। हिंदी में समाचार 7:05 और रात 11:05 पर, अंग्रेजी में समाचार 8:45 पर, समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ 8 9।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप

0: खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ।

0: दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी ने, संगीत मदन मोहन का था।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए यशोदास और हेमलता की आवाजों में चित्तचोर फिल्म का गीत, संगीत रविंद्र जैन का है।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में रूप तेरा मस्ताना फिल्म का एक गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए, खयाम की बनाई तर्ज पर त्रिशूल फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

त्रिशूल फिल्म के सिकित के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्रांतियां।

मौजा ग्राइंडियां कार्यक्रम में आप सभी किसान बागबान साथियों का हम स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ई कृषि बाजार विषय पर, साथ ही आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में कुछ लोकगीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोक भजन के साथ।

जी किसान साथियों, कितनी सत्यता है इस लोक भजन में। वास्तव में ये संसार कर्मों की खेती ही है। जैसा कर्म हम करेंगे उसी के अनुरूप फल हमें प्राप्त हो जाएगा। और कर्म और फल का जो संबंध हमारे किसान बागवान साथियों से ज़्यादा कौन जान सकता है। हमारे किसान साथी पूरी मेहनत के साथ खेतों में पसीना बहाते हैं और जब फसल तैयार होती है तो जो प्रसन्नता किसान बागवान साथियों के चेहरों पर होती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जी हाँ साथियों, और हम भी यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छी फसल प्राप्त करते रहें। इसके लिए समय समय पर हम आपको बहुत सी जानकारियां देते हैं और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी एक योजना के बारे में जिसका नाम है राष्ट्रीय ई कृषि बाजार। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जिसे एक राष्ट्र एक बाजार पहल के अंतर्गत देश भर की कृषि एवं किसान कल्याण समितियों की मंडियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन यह मंच 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ था। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वित ये मंच कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन व्यापार सुविधाएं प्रदान करता है। जानकारी जारी रहेगी, पहले सुनते हैं ये लोकगीत।

0: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मोजा ग्राइंडियां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ई कृषि बाजार के बारे में। साथियों, ये मंच एकल खिड़की प्रणाली माध्यम से किसानों को उत्पाद आवक सूचना, गुणवत्ता परीक्षण, ई बोली और प्रत्यक्ष ई भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विपणन में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना है।

मोजांग ग्रांतियां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ई कृषि बाजार के बारे में। जी हां किसान साथियों, कृषि लंबे समय से भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना का एक मूलभूत स्तंभ रही है, जो देश के करीब आधे कार्यबल का भरण पोषण करती है और इसके विकास के पथ को आकार देने का कार्य भी करती है। भारत में कृषि व्यापार के डिजिटल रूपांतरण के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं, आइए थोड़ा नजर डालते हैं। मार्च 2026 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1656 मंडियों का एकीकरण हुआ है। इसके अलावा मार्च 2026 तक 1.80 करोड़ से अधिक किसान, 2.73 लाख व्यापारी और 4,724 किसान उत्पादक संगठन राष्ट्रीय ई कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, वर्ष 2016 से मार्च 2026 के बीच 13.25 करोड़ मीट्रिक टन का संचयी व्यापार दर्ज किया गया, जिसका कुल मूल्य 4.84 लाख करोड़ रुपए था मार्च 2026 तक। हाल के समय में 204.76 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ, जो निरंतर परिचालन गति को दर्शाता है।

किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने बात की राष्ट्रीय ई कृषि बाजार के बारे में। राष्ट्रीय ई कृषि बाजार से आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जुड़े हैं तो आप भी इस मंच से जुड़ सकते हैं और अपनी कृषि आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।

किसान साथियों, इसी लोकगीत के साथ आज का मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम अब संपन्न होता है। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अब दीजिए इजाजत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोचा ग्राइंडियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है।

अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं कुलदीप।
7: और मैं हूं अश्विनी।
6: अश्विनी जी, कैसे हाल चाल है आपके?
7: जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाई बहन भी बिल्कुल ठीक होंगे।
6: जी किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी समय समय पर आपको देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। देखिए अश्विनी जी, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में देखिए हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसान और बागवान भाई बहन स्वस्थ रहेंगे तो काम भी अच्छी तरह कर पाएंगे
7: जी।
6: तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ ही साथ जो उनका पशुधन है उसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और जो फसलें उन्होंने अपने खेतों में या बाग बगीचों में लगा रखी है तो उसका भी निरीक्षण समय समय पर करते रहना है कि कोई बीमारी या कोई कीट तो नहीं लगा है। अगर वो बीमारी के लक्षण या कीट के लक्षण अपनी फसलों में देखते हैं तो उसके लिए समय रहते उसके निदान के लिए उन्हें उपाय करने हैं
7: जी। बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज के कार्यक्रम में हमारा विषय भी इसी चीज़ से संबंधित है कि किसान अपने खेतों में, खासकर प्राकृतिक खेती में, उर्वरक प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं
6: जी।
7: इसके साथ ही कार्यक्रम में सुनाएंगे पहाड़ी लोकगीत और सुनाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय रहेगा टमाटर और शिमला मिर्च में एकीकृत रोग प्रबंधन
6: जी। तो देखिए अश्विनी जी, जैसे आप पहले ही हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को बता चुके हैं कि आज हम बातचीत करेंगे प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। देखिए अश्विनी जी, सबसे पहले तो हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत कर लेते कि प्राकृतिक खेती होती क्या है
7: जी। जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है, तो सबसे पहले ये बताना आवश्यक है कि आज हमारी खाद्य आहार

0: श्रृंखला जहर युक्त हो चुकी है। किसान को उसकी फसल का पूरा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता जहर युक्त खाद्य आहार खाने पर मजबूर है। यदि हमें इस जहर युक्त खाद्य आहार से बचना है तो हमें ये प्रण करना होगा कि ना तो जहर उगाएंगे और ना ही खाएंगे और ना ही खाने देंगे। और इसका एक ही हल है कि प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। देखने और सुनने में लगता है कि प्राकृतिक खेती, जिसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है, इसके मायने कुछ भी नहीं है, कुछ तो खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब आपको फसल उत्पादन के लिए कुछ भी खरीद कर ना डालना पड़े तो इसे ही आप जीरो बजट प्राकृतिक खेती कह सकते हैं और इसी को जहर मुक्त खेती भी कहा जा सकता है।
1: जी, तो देखिए अश्वनी जी, अगर हम बात करें, जब भी हम कोई फसल अपने खेतों में लगाते हैं तो हमें उसके पोषण के लिए कुछ ना कुछ खाद या उर्वरक डालने होते हैं। तो जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो जैसे अश्वनी जी आप पहले ही हमारे किसान भाइयों को बता चुके हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि बाहर से यानी बाजार से कोई भी ना तो खाद या उर्वरक, कोई भी चीज आपको अपनी फसलों में नहीं डालनी है। स्थानीय तौर पर उपलब्ध जो उर्वरक है या खादें हैं वो तैयार करनी है और वही खादें या वही उर्वरक आपको अपने खेतों या फसलों में डालना है।
0: जी
1: तो सबसे पहले आते हैं जीवामृत। तो जीवामृत भी आप अपनी फसलों के पोषण के लिए डाल सकते हैं। जीवामृत की बात करें किसान भाइयों, तो जीवामृत में बहुत अधिक संख्या में लाभदायक जीवाणु होते हैं जो भूमि में जामण का काम करते हैं और पौधों के लिए आवश्यक तत्व भी ये प्रदान करते हैं। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जीवामृत मिट्टी में विशाल प्राकृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और फसल के लिए पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है। जीवामृत को हफ्ते में 2 बार आप उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार तो आपको जीवामृत का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी अपनी फसलों के लिए हो जाता है। ह्यूमस बनाने के लिए आच्छादन का प्रयोग जीवामृत गुणों को बढ़ा देता है। जीवामृत को उर्वरक और भारी कार्बनिक खाद के विकल्प के रूप में भी आप उपयोग में ला सकते हैं।
0: जी बात करें कि यदि 1 एकड़ के लिए आप जीवामृत बनाना चाहते हैं तो आपको निवेश सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो इसके लिए आपको चाहिए 200 लीटर पानी, देसी गाय का ताज़ा गोबर 10 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 1.5 किलोग्राम, बेसन 1 से 1.5 किलोग्राम और मेड़ की मिट्टी आपको चाहिए होगी 1 मुट्ठी। बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो एक ड्रम में 200 लीटर पानी भर के उसमें 5 से 10 लीटर गौमूत्र मिला दें, फिर इसमें 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर मिला लें। अब इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़ भी आपको मिला देना है और फिर 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन और 1 मुट्ठी खेत की मेड़ की मिट्टी इसमें आपको मिला लेनी है। अब इस घोल को घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे आपको घोलना है और उसके बाद इस मिश्रण को भरे ड्रम जूट की बोरी से ढककर 3 दिन यानी कि 72 घंटों के लिए आपको रख देना है। यदि शीतलहर, जिसमें कि तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा हो, तो इसे 4 से 5 दिन तक आपको इसी ड्रम में रहने देना है। सुबह शाम आपको 2-2 मिनट के लिए घड़ी की सुई की दिशा में इस घोल को घोलना है।
1: जी, बात करें किसान भाइयों उपयोग के बारे में, तो तैयार जीवामृत को गर्मी के मौसम में 3 दिन बाद एवं सर्दी के मौसम में 4 से 5 दिनों बाद कपड़े से छानकर स्प्रे पंप की सहायता से आप खड़ी फसल में इसकी स्प्रे कर सकते हो। इसको सिंचाई के साथ भी आप कृषि भूमि में दे सकते हैं। सीधा भूमि की सतह पर 2 पौधों के बीच भी आप जीवामृत को डाल सकते हैं। जीवामृत का उपयोग विभिन्न फसलों में आप अलग-अलग समय पर कर सकते हैं।
0: जी इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं घन जीवामृत की। घन जीवामृत भी जीवाणु युक्त सूखी गोबर का एक जामण है जिसे बुआई के समय या पानी के 2 से 3 दिन बाद दे सकते हैं। यह फसल के सभी गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताएं प्रदान करता है। इसका उपयोग करने से कृषि भूमि में 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद की अथवा केंचुआ खाद की या यूरिया या डाई अमोनियम फास्फेट डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो घन जीवामृत जीवाणु युक्त सूखी गोबर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। यह भूमि की उर्वरक क्षमता में भी सुधार करता है। इसके उपयोग से फसलों को तत्काल ऊर्जा मिलती है और सीमित सिंचाई एवं वर्षा ऋतु आधारित क्षेत्रों में भी फसलों को बहुत अच्छा लाभ इससे मिलता है।
1: जी, तो अगर हमारे किसान भाई घन जीवामृत बनाना चाहते हैं तो कौन सी सामग्री उनको लेनी है? देसी गाय का सूखा गोबर किसान भाइयों आपको लेना है 100 किलोग्राम के आसपास। गुड़

0: या फलों का गूदा आप ले सकते हो लगभग 1 किलोग्राम के आसपास। बेसन आपको लेना है लगभग 2 किलोग्राम और देसी गाय का मूत्र आपको आवश्यकता अनुसार लेना है। अब बनाने की विधि की बात करें तो देसी गाय का सूखा गोबर आपको पहले लेना है। यदि देसी बैल भी है तो 50-50 किलोग्राम दोनों गाय और बैल का आप गोबर ले सकते हो। इसमें 1 किलोग्राम गुड़ या मीठे फलों का गूदा भी आपको मिलाना है और 1 किलोग्राम बेसन भी आपको इसमें पहले ही डाल देना है। यदि गोबर सूखा हो तो थोड़ा सा गोमूत्र आप और डाल सकते हैं। अब इसको फावड़े या कस्सी से अच्छी प्रकार मिलाकर छाया में इसे रख देना है।
1: जी, घन जीवामृत बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यदि शीतलहर चल रही हो तो उसे बोरी से ढककर रख दें, अन्यथा ढकने की आवश्यकता नहीं है। और घन जीवामृत पर बारिश का पानी और सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। बात करें उपयोग की, तो इसका उपयोग 48 से 96 घंटे में तैयार होने के तुरंत बाद किया जा सकता है। यदि ठंड बहुत ज़्यादा हो तो 4 दिन तक रखें, 4 दिनों के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है।
0: जी, साथ ही साथ बात करें अगर हम बीजामृत की, तो ये पौधों की आरंभिक अवस्था के दौरान कीड़ों और रोगों से फसल को काफी संरक्षण प्रदान करता है। और इसके लाभों की बात करें किसान भाइयों, तो बीजों की जो अंकुरण क्षमता है बीजामृत के कारण बढ़ती है। बीजों की जो सुप्तावस्था है वो भी जल्दी ही टूटती है। बीजों में उम्र बढ़ने के निरोधक है वो समाप्त हो जाते हैं और बीज जो है वो लंबी आयु के होते हैं, यानी काफी समय तक आप उन बीजों का उपयोग कर सकते हो। बीजों में एक समान अंकुरण होता है। प्रारंभिक अवस्था में ही मौसमी कीटों और रोगों से इसके कारण यानी बीजामृत के कारण बचाव आप कर सकते हो। और बीजामृत से उपचारित पौधे से आप अच्छे और स्वस्थ पौधे उगा सकते हो।
1: जी, बात करें बीजामृत को बनाने की निवेश सामग्री की, तो पानी आपको लेना है 20 लीटर, देसी गाय का मूत्र आप लेंगे 5 लीटर, गोबर 5 किलोग्राम, चूना 50 ग्राम, खेत की मेड़ या फसल के जड़ के पास की मिट्टी की एक मुट्ठी भी आपको लेनी है। विधि की अगर हम बात करें तो पानी में गौमूत्र मिलाने के बाद इसमें ताज़ा गोबर मिलाएं, इसके बाद इसमें चूना भी मिला दें, इसके बाद इस घोल में एक मुट्ठी खेत की मेड़ या फसल की जड़ के पास की मिट्टी को मिला लें। सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद इस घोल को लकड़ी की डंडे के सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे घुमाकर मिला लें। इसके बाद इसको छांव में रखकर बोरी से ढककर रात भर के लिए आपको रख देना है। इस घोल को 24 घंटे रखने के बाद इससे बीजों को उपचारित किया जा सकता है।
0: जी, अगर उपयोग विधि की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनाज वर्गीय फसलों एवं दलहनी फसलों के बारे में। अनाज वर्गीय फसलें जैसे कि धान है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, और साथ ही साथ दलहनी फसलों के चयनित बीजों को फर्श या देसी गाय के गोबर से लेपी हुई भूमि पर फैलाकर अंदाजे से बीजों पर आप बीजामृत छिड़क सकते हैं। बीजों को दोनों हाथों से मलकर छाया में सुखाने के बाद ही आपको उनको बोना है। बात करें दलहनी फसलों की, तो दलहन के बीजों का छिलका पतला होने के कारण हाथों से रगड़ने पर यह निकल जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि चयनित बीजों को फर्श पर फैलाकर अनुमान से बीजामृत आपको उसके ऊपर छिड़क देना है। तो देखिए अश्विनी जी, ये तो ही अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक प्यारे से लोकगीत का। तो आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: किसान भाई, उस मुहूर्तों में अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोकगीत। आइए अब आपको सुनाते हैं एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। बातचीत का विषय है टमाटर और शिमला मिर्च में एकीकृत रोग प्रबंधन। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर मणिका तोमर और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कुलदीप।
1: किसान और बागवान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हो कि हम कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं टमाटर एवं शिमला मिर्च में एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में। और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगी डॉक्टर मणिका तोमर जी। तो सबसे पहले तो अपने इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर मणिका तोमर जी का स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर तोमर। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए सब्जी उत्पादन काफी सारे क्षेत्रों में किया जाता है, और सब्जी उत्पादन में जहां तक बात आती है शिमला मिर्च और टमाटर की, अधिकतर जो उत्पादन किया जाता है वो बरसात के मौसम में हमारे काफी सारे क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। तो कौन से जो रोग है जो आजकल टमाटर या शिमला मिर्च की फसल में लग जाते हैं?
2: जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। मैं बताना चाहूंगी टमाटर शिमला मिर्च में हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। हम जिस समय टमाटर और शिमला मिर्च पूरे देश को सप्लाई करते हैं उस समय हमें अच्छा दाम मिलता है, क्योंकि प्लेन से हमें उस वक्त टमाटर और शिमला मिर्च की फसल नहीं मिलती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब से किसान बागवान इस फसल की बीज बोता है उस समय से लेकर जब तक तुड़ान नहीं होता, कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनसे ये पौधे ग्रसित होते हैं। तो देखने वाली बात है कि जब आपने ये बीज लगाया, क्या वो बीज सही तरीके से बाहर आया। कई बार देखा गया है कि जो बीज है आपने लगा दिया, नर्सरी लगा दी, टमाटर हो शिमला मिर्च हो, लेकिन वो बीज अंदर ही सड़ जाता है। और अगर वो बाहर भी आए, पौधा भी बने, तो जब छोटा ही पौधा है तभी वो बिल्कुल उसकी गर्दन नीचे को हो जाती है और पूरा का पूरा वो जो छोटा पौधा है वो गिर जाता है। इस तरह से ये रोगों की जो शुरुआत होती है, अगर नर्सरी ही हमारी हेल्दी नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, तो आगे जो पौध है वो भी स्वस्थ नहीं होगी। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा पौधा है वो बिजाई से लेकर जब तक हमारा तुड़ान नहीं होता टमाटर और शिमला मिर्च में, वो स्वस्थ हो। उसमें कई प्रकार की बीमारियां लगती है, जैसे कि मैंने बताया ये कमर तोड़ रोग है, जो जैसे ही आप पौधा लगाएंगे, बीज लगाएंगे, आपका पौधे में बीमारी आ जाएगी। अगर कमर तोड़ रोग से पौधा बच जाता है तो आगे हम देखते हैं कि पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे लग जाते हैं। वो शुरुआत में तो छोटे होते हैं लेकिन आगे जाकर वो बढ़ जाते हैं। उससे पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्ता पीला पड़ने लगता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। धीरे धीरे ये रोग वाले पौधों की संख्या बढ़ती है और हम देखते हैं कि जब फल लगता है टमाटर और शिमला मिर्च का तो उसमें सड़न स्टार्ट होती है। ये सड़न आपके डंडी के किनारे से

0: भी स्टार्ट हो सकती है, या टमाटर या शिमला मिर्च में, किसी भी तरफ से फल में सड़न स्टार्ट हो जाती है, उसमें कई पोषक तत्वों की कमी आती है, तो भी वो सारी कमियां आपके फल में देखने को मिलती है।
1: देखिए, बरसात का मौसम आजकल चल रहा है, आजकल जो हमारे सब्जी के जो पौधे हैं उनकी जो अवस्था है उसमें छोटे छोटे जो फल है वो लगना शुरुआत उनकी हो चुकी है। तो देखिए, तो बारिश के मौसम में और इस अवस्था में कौन से रोग है जो टमाटर और शिमला मिर्च की फसल में लग जाते हैं?
0: जी आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात वैसे भी अपने साथ कई प्रकार के कीटाणुओं को पनपाती है। अब जहां हमने टमाटर शिमला मिर्च लगाए हैं, हमें देखने वाली बात है कि उस मिट्टी में क्या कुछ कीटाणु या जीवाणु, बैक्टीरिया है, फंगस है, निमेटोड है, क्या वो है। हमें ये सब चीजें इतनी सूक्ष्म हैं कि इस तरह नहीं दिखती, उसके लिए सॉइल में आपको टेस्ट करानी पड़ती है लैब में जाके। लेकिन अगर हम किसानों बागवानों की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि आजकल बरसातों में क्योंकि फल अब लगना स्टार्ट हो गया है, तो हम पाएंगे कि जो आपका टमाटर और शिमला मिर्च का पौधा है, उसमें सबसे पहले तो अगेता झुलसा रोग, आने वाले समय में पछेता झुलसा रोग, बकाई रॉट जिसमें टिक्की रोग भी कहा जाता है, जिसमें टमाटर के ऊपर एक काली टिक्की बन जाती है, और आने वाले समय में खड़ सूख रोग या विल्ट रोग जिसे कहा जाता है, बैक्टीरियल कैंकर, ये सब प्रकार की चीजें हमें बरसात के शुरुआत होते से स्टार्ट हो जाती हैं आनी। अब किसान बागवानों को ये पता लगने लगता है कि उनका पौधा सूख रहा है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पे दाग पड़ रहे हैं, पत्ते ऐसा लग रहा है जैसे झुलस गया है, जो फल लग रहा है उस पे दाग पड़ रहे हैं, उसमें नीला और काला रंग का धब्बा लग रहा है, जो छूने पर बहुत ही पिलपिला होगा, उसमें से अंदर से पानी निकलेगा, आपको सफेद फफूंद के निशान भी दिखाई देने लगेंगे। तो होता क्या है कि ये सारी चीजों का उपाय किसान बागवान ये समझते हैं कि सीधा स्प्रे है। आजकल आप जानते हैं, सब लोग बहुत कॉन्शियस हैं कि हम जो खा रहे हैं उसमें कम से कम दवाई हो, तो क्यों ना हम वो बात करें कि ये बीमारी लगने से पहले ही हम रोगों का प्रबंधन करें, ताकि ये बीमारी उस स्टेज तक ना आए कि हमारे को ज्यादा स्प्रे करने पड़े। हम किसान बागवानों को बार बार यही निवेदन करते हैं कि जब आपकी पौध बढ़ने लगे, तो जो आपका पौधे का निचला हिस्सा है, उसमें से आप 15-20 सेंटीमीटर तक निचले हिस्से के पत्ते हटा दें। उससे होगा क्या कि जब बरसात होगी या आप जब सिंचाई करेंगे, तो जो मिट्टी है वो उछल कर निचले हिस्से के पत्तों पर और फलों पर नहीं लगेगी, और जब वो मिट्टी उछल कर निचले हिस्से के पत्तों और फलों पर नहीं लगेगी, तो मिट्टी में रहने वाले कीटाणु, फंगस, बैक्टीरिया भी पत्तों और उन फलों पर नहीं आएंगे। ये कीटाणु, चाहे फंगस है चाहे बैक्टीरिया है, इतने छोटे, इतने सूक्ष्म है कि ये पत्तों से और फलों से अपना रास्ता अंदर, पौधे के अंदर तक बना देते हैं, हमें पता नहीं चलता। गुड़ाई करते वक्त या पौधों में मिट्टी चढ़ाते वक्त अगर गलती से कहीं खिलना या कोई औजार पौधे में बज जाता है, तो वो इन कीटाणुओं के लिए या इन बैक्टीरिया फंगस पौधे के अंदर जाने के लिए रास्ता बना देता है। ऐसे समय पर अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ना लें, निचले हिस्से के पत्ते ना निकालें, या दवाई का स्प्रे उपयुक्त टाइम पे और उपयुक्त डोज पे ना करें, तो आगे आने वाले समय में पूरे की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है।
1: जी, जैसे आपने बात की कि पत्ते निकालने हमारे किसान भाइयों को, तो एक सही तरीका अगर आप बताना चाहें हमारे किसान भाइयों को, अगर टमाटर की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, तो कौन सा एक सही तरीका है? क्योंकि ज्यादा हानि जो पौधों की भी नहीं होनी चाहिए और हमारी जो फसल भी वो भी सुरक्षित रहनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, आपने सही चीज पूछी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें बहुत सारे पत्ते लगते हैं, शुरुआत से लेकर जब तक तुड़ान नहीं होता, आप देखेंगे पूरा का पूरा पौधा हरा होता है। तो हमें क्या करना है, शुरुआत से ये ध्यान रखना है कि हम जितना आपका हाथ है, अपने हाथ के ऊंचाई जितना जितना आपका हाथ खुलता है जमीन से लेकर ऊपर तक, उतने हिस्से के पत्ते टमाटर और शिमला मिर्च पे समय समय पर निकालते रहें। इसके दो उपयोग हैं, एक तो जो मैंने पहले बताया कि मिट्टी उछल कर इन पत्तों पर नहीं आएगी और अंदर बीमारी नहीं जाएगी, दूसरा ऐसे पत्ते हटाने से क्या होगा कि टमाटर शिमला मिर्च में पूरे हवा जो नमी है, नमी प्रॉपर बनी रहेगी, क्योंकि अगर पत्ते ज्यादा होंगे तो नमी ज्यादा होगी, अगर नमी ज्यादा होगी तो ऐसे कीटाणु ज्यादा बढ़ेंगे, तो हवा का संचार सुचारू रूप से होगा, ज्यादा टेम्परेचर पौधों से पौधों के बीच में नहीं होगा, ज्यादा नमी नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस को पनपने के लिए नमी और ठीक टेम्परेचर की आवश्यकता है, जो कि तब बनती है जब वो घने घने लगे हों। तो निचले हिस्से के पत्ते समय समय पर हमें निकालने हैं, और जब हम निकाल लें तो उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हम कोई दवाई का छिड़काव करें, कुछ ऐसे कॉम्बी फंजीसाइड्स छिड़काव करें जिससे फंगस बैक्टीरिया पनपने ना पाए।
1: जी, तो ये तो आपने बात की, हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं रोग लगने से पहले पहले किस प्रकार से प्रबंधन

0: कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि समय रहते हमारे जो किसान भाई है उपाय नहीं कर पाते हैं और उनकी फसल में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो अगर रोग लग जाते हैं उसके बाद उन्हें किस तरह से एकीकृत जो रोग प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह से शिमला मिर्च और टमाटर में कर सकते हैं।
1: आपने बिल्कुल सही पूछा कि एकीकृत रोग प्रबंधन से हमारा ये अभिप्राय है कि जब आपने बीज लगाया उस समय से लेकर जब तक आपकी फसल की तुड़ान नहीं होती, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रोग को मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी मिट्टी की जाँच से। हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि किसान बागवान अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवा सकते हैं। हम उसमें आपको ये सही जानकारी देंगे कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, आपको कौन सी खाद डालनी है और कौन सी खाद नहीं डालनी है। इससे क्या होगा कि आप जरूरत से ज्यादा खाद नहीं डालेंगे, और जब जरूरत से ज्यादा खाद नहीं होगी तो जो रोग भी कम आएंगे। ज्यादा खाद डालने से आप ये ना सोचें कि आपकी पैदावार अच्छी होगी, ज्यादा खाद रोगों को भी न्योता देती है, एक चीज। दूसरी चीज कि आपकी जो मिट्टी है जहां आप नर्सरी लगा रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप स्टरलाइज करें केमिकल से। स्टरलाइज का मतलब होता है कीटाणुओं का विनाश करना। उसके लिए आप फॉर्मलिन नाम का एक दवाई मिलती है, उसका 1:7, यानी कि अगर 1 लीटर फॉर्मलिन है तो 7 लीटर पानी के घोल में उसको मिलाना। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर 1 लीटर आप फॉर्मलिन लेते हैं तो उसको 7 लीटर पानी में आप मिलाएंगे। उस घोल से आप जहां आपकी नर्सरी लगनी है उसकी सिंचाई करें और उसको अच्छी तरह बोरी या पॉलीथीन से ढक दें ताकि उस केमिकल की जो गंध है वो बाहर ना जा सके, और उसको 8 से 10 दिन के बाद बोरी को हटाएं। अब अपनी क्यारियां बनाएं, लेकिन अभी बीज नहीं लगाने, 8-10 दिन तक उस क्यारी को खुला रखें ताकि वो जो गंध बची है मिट्टी में वो उड़ जाए। तो टोटल आपने ये 14 से 15 दिन का कार्यक्रम होता है बिजाई से पहले, जब आपने नर्सरी लगानी है। नर्सरी लगाने के बाद आप फॉर्मलिन का स्प्रे नहीं करते क्योंकि पौधा मर जाता है। आप अगर ये फॉर्मलिन की ट्रीटमेंट अपनी नर्सरी लगाने के 15 दिन पहले करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नर्सरी भी हेल्दी होगी, जो बैक्टीरिया है फंगस मिट्टी में प्रेजेंट है जिससे बीमारियां आती हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। यहां से आप अगर हेल्दी नर्सरी की शुरुआत करते हैं तो आपकी निश्चित तौर पर स्वस्थ पौधा होगा, एक चीज। दूसरा, आप खरपतवार को समय समय पर हाथ से निकालें।
0: डॉक्टर मनिका तोमर जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी शिमला मिर्च और टमाटर में एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में। ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था टमाटर और शिमला मिर्च में एकीकृत रोग प्रबंधन। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर मनिका तोमर और उनसे जानकारी हासिल की है कुलदीप ने।
0: जी तो देखिए अश्वनी जी, अब इस जानकारी के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक और प्यारे से पहाड़ी गीत का। तो आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये प्यारा सा पहाड़ी गीत।
2: जी

0: किसान भाइयों, अभी आपने कृष्णलाल सहगल की आवाज में सुना ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।
1: जी तो देखिए अश्विनी जी, अब तो घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। तो अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
2: प्रधानमंत्री किसान।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर।

0: भोजन वस्त्र दवा हर पल,
1: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे सम्मान से जीवन सवर रहे,
0: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
3: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
2: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
3: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। मछुआरा परिवारों को वित्तीय सहायता आवंटित। कांगड़ा जिले के देहरा में स्थापित होगी प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना। सरकार ने जारी की 46 करोड़ रुपए की राशि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा दी जा रही धनराशि का सदुपयोग करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और सुजानपुर में बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बताया लोकतंत्र की जीत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें जसवां परागपुर क्षेत्र के बाड़ी में 95 लाख रुपए से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण और लगभग 5 करोड़ रुपए की अनेक सड़कों का शिलान्यास भी शामिल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाडासिबा में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1012 मछुआरा परिवारों को 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस दौरान प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने डाडासिबा में नया एसडीएम कार्यालय खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कस्बा कोटला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे संचालित करने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 90,000 परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें अभी तक सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके माध्यम से इन परिवारों को लगभग 2-2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डल थोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने 46 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की जल उपचार परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिवस महान हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सभी लोगों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान पर बिताने और खुद को स्वस्थ रखने का आह्वान किया।
1: मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।
0: कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और पौधरोपण को जन

0: आंदोलन बनाया गया है। उन्होंने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की सिद्धपुर घाड़ पंचायत में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने आम का पौधा रोपित किया और सभी लोगों से पौधरोपण में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
1: आज पर्यावरण के बारे में विश्व जो है वो काफी सोच कर रहा है और जिस तरह से कटान हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, निर्माण हो रहा है, जितनी तादाद में पेड़ कटे हैं उतनी तादाद में उनको रिप्लेस नहीं कर सके हैं। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि वनों को हम सुरक्षित रखें।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निशुल्क दवा नीति के तहत केंद्र सरकार करोड़ों रुपए हिमाचल को दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की विफलता के कारण बेहतर इलाज के अभाव में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भरपूर आर्थिक मदद देने के बावजूद भी राज्य सरकार केंद्र पर दोषारोपण कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर हैं, लेकिन दवाइयां उपलब्ध न होने पर उन्हें मजबूरन बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
3: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
2: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत एक जनसंवाद कार्यक्रम में 6 पंचायतों के लोगों से संवाद किया। उन्होंने जन शिकायतें भी सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। राजेश धर्माणी ने बताया कि अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत अति निर्धन परिवारों का चयन अंतिम चरण में है और 75,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार योजना के तहत 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले राजेश धर्माणी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मरहाणा में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्कूल में 5,00,000 रुपए से स्टेज का निर्माण होगा और खेल मैदान में 4 सोलर लाइटें स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 137वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सुरेश चंद और उपाध्यक्ष पद पर रंजना कुमारी ने जीत हासिल की। वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि 3 महीने के इंतजार के बाद इनका चुनाव हुआ है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर चुनाव को लटकाए रखा, लेकिन अब लोकतंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि जनता का राज्य सरकार से मोह भंग हो गया है।
5: आज सुजैनपुर बीडीसी का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों चुनकर आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को 3 महीने का इंतजार करना पड़ा। सरकार इसको इसके लिए लटका रही थी।

0: सरकार कोशिश कर रही थी तोड़फोड़ करने का। मैं समझ सकता हूं कि जिला हमीरपुर में के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पंचायती राज चुनाव में पूरी तरह सुपड़ा साफ हुआ है। आने वाले वर्ष में जो विधानसभा के चुनाव भी होंगे उनके लिए भी पूरे प्रदेश में जनता ने साफ संदेश जो है वो दिया है और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया जो होने वाला है।
1: प्रदेश के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक पहलुओं से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिरमौर जिले में भी नौहराधार क्षेत्र के बर्फबारी प्रभावित 10 गांवों में इस दौरान जनगणना की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी लोगों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
2: जिला सिरमौर में जो हमारा स्नोबाउंड एरिया है वो तहसील नौराधार में पड़ता है और इसमें हमारे 10 गांव हैं। यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन इनॉग्रेशन है, जो फेज 2 है सेंसस का, ये 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। अब सेकेंड फेज में इन 10 गांव में हमारे जो इनॉग्रेटर्स हैं वो लोग जाएंगे, घर घर विजिट करेंगे और जो बाकी का जो हमारा सेंसस का जो डेटा हमें लेना है पॉपुलेशन इनॉग्रेशन का, उसको कलेक्ट किया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बदौलत आगे जो हमारी पॉलिसीज बननी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जसवां परागपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास, मछुआरा परिवारों को वित्तीय सहायता आवंटित। कांगड़ा जिले के देहरा में स्थापित होगी प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना, सरकार ने जारी की 46 करोड़ रुपए की राशि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा दी जा रही धनराशि का सदुपयोग करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और सुजानपुर में बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी, वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बताया लोकतंत्र की जीत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। निदेशालय अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक समूह अराजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैचवाइज जॉब ट्रेनी आधार पर भरा जाना है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यावहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बारनेस कोट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। दिनांक 10 सितंबर 2026 के उपरांत प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद,

0: अन्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद। आयु सीमा, सामान्य वर्ग के लिए आयु दिनांक 1/1/2026 को 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है। अधिक जानकारी के लिए प्रार्थी दूरभाष नंबर 01772629945 या फिर 01772629945 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजे हैं, लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत।

नुसरत फतेह अली खान को अभी आपने सुना। सबरस कार्यक्रम की अगली पेशकश लीजिए सुनिए गुलाम अली की गाई ये गजल।

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आपने सुना। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गीत मुकेश ने गाया था। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में क्रांति फिल्म का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए DNA सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी

0: जाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीति

0: आर्थिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस

0: न्यू कार प्रमोशन मिल गया क्या?
1: प्रमोशन नहीं, ट्रू वैल्यू मिला।
0: मतलब प्रीमियम लुक, प्रीमियम प्राइस भी।
1: प्रीमियम लुक तो है पर प्राइस एकदम रीजनेबल, वो भी लो डाउन पेमेंट और इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पे पाएं ग्रेट ऑफर्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्री ओन्ड कार्स विद अप टू 1 ईयर वारंटी एंड 3 फ्री सर्विसेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर नियरेस्ट ट्रू वैल्यू डीलरशिप और लॉग ऑन टू www.marutisuzukitruevalue.com। TNC अप्लाई।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: अरे वाह, न्यू कार प्रमोशन मिल गया क्या?
1: प्रमोशन नहीं, ट्रू वैल्यू मिला।
0: मतलब प्रीमियम लुक, प्रीमियम प्राइस भी।
1: प्रीमियम लुक तो है पर प्राइस एकदम रीजनेबल, वो भी लो डाउन पेमेंट और इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पे पाएं ग्रेट ऑफर्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्री ओन्ड कार्स विद अप टू 1 ईयर वारंटी एंड 3 फ्री सर्विसेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर नियरेस्ट ट्रू वैल्यू डीलरशिप और लॉग ऑन टू www.marutisuzukitruevalue.com। TNC अप्लाई।
6: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, आइए सुनते हैं साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन।
7: श्रोताओं नमस्कार, साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। देश और प्रदेश में श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार। शिमला में चल रहे विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने किया धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा असंवैधानिक कानून बनाकर हाईकोर्ट में फजीहत करवा रही सुखू सरकार। भाई बहन के पवित्र प्रेम और टूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और मदद का वचन दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों व विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करे व खुशहाली और समृद्धि लाए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लेकिन युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन सरकार शुरू से अंत तक झूठ बोलती रही।
8: गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी, 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने बातें पूछी थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ।
7: प्रदेश के कई

0: भागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। सरकार के अनुसार इसके पीछे फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी का स्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट व नेटवर्क की कमी, बिजली की समस्या और कई कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नहीं होना प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 विभागों के तहत आने वाले बोर्डों, निगमों के कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों में फील्ड कर्मचारियों के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में कई जगह फील्ड में तैनात कर्मचारी के लिए कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में बने 4 लेन में वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाई जाएगी। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 4 लेन में स्पीड प्रति घंटा 60 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्पीड के कारण 4 लेन में कोई दुर्घटना ना हो और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। विधायक मलिंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्पीड़न मामले पर शिकायत दर्ज करने को लेकर सरकार नया नियम बनाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायत को गोपनीय रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपनी शिकायत को पूरी तरह व्यक्त कर सके। विधायक राकेश कालिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 7,59,05,479 पर्यटकों का आगमन हुआ है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को भी मिला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर गंभीर आरोप लगाए।
1: मॉनसून सत्र के सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा देखने को मिला और दोनों पक्षों ने आमने सामने आकर नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
2: बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है, उस पर ध्यान नहीं। हिमकेयर सहारा योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐसी योजना है जिसको बच्चा बच्चा जान, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की जिस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, और झूठा प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं की जनहित की योजनाओं के खिलाफ जिस प्रकार से चलाया है, हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने महंगाई और भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।
3: ये विधानसभा फेस नहीं कर सकते। पहले 2 हफ्ते या 3 दिन इन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में उलझा दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक पीरियड में देखते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदन चलाना चाहती है और ये सदन रोकना चाहती है, ये तो ओपीएस के विरोधी है। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस दी, सबसे बड़ा फैसला किया। इनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, उन चिंताओं के चलते हताशा में ये नारेबाजी कर रहे हैं।
0: प्रदेश सरकार ने राज्य में 12 से 15 वर्ष की आयु वाले अनुबंधित यात्री वाहनों यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल के संचालकों को फिलहाल राहत दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा और वाहनों की फिटनेस जाँच को लेकर सदन में वक्तव्य के माध्यम से सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती और मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्रीय प्रावधान में बदलाव के बिना राज्य स्तर पर आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेना संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स के आग्रह पर केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय आने तक 12 से 15 वर्ष की आयु वाले ऐसे वाहन जो प्रदेश की सीमा के भीतर संचालित होते हैं के चालान ना करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया

0: संवाद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के निर्माण में देश की खेल प्रतिभा और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि बेहतर प्रतियोगी बनना भी सिखाता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े कानून को प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार असंवैधानिक कानून बनाकर बार बार हाईकोर्ट में अपनी फजीहत करवा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि खुद को कानून का जानकार बताने वाले मुख्यमंत्री को विपक्ष ने बार बार आगाह किया है और सरकार के कानून संवैधानिक कसौटी पर सही नहीं उतर रहे हैं। इस बीच जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। टैक्सी ऑपरेटर अपनी टैक्सियों की परमिट अवधि 12 से 15 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा टैक्सी ऑपरेटरों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ऑपरेटरों की मांगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के समक्ष उठाने का भरोसा दिया ताकि उन्हें राहत मिल सके।
2: जो अनशन पिछले 5 दिन से चला था, आज वो समाप्त हुआ। प्रदेश सरकार के समक्ष हमने पिछले कल भी बात कही थी और उसके साथ साथ में हम जा करके अभी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, हम इस मामले को पूरा केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे ताकि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी साथी हैं उनको राहत मिल सके।
0: प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। पिछले एक सप्ताह से मॉनसून के कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश का क्रम धीमा हुआ था, जिससे तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त की शाम से प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक मॉनसून की सक्रियता से मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
3: 30 अगस्त की देर शाम से जो मॉनसून फिर से सक्रिय होगा और 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक संभावना है कि प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती, यहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में 31 अगस्त और 1 सितंबर को संभावना है कि हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश, साथ एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। ओवरऑल 1 जून से लेकर एज ऑन 28 अगस्त तक बात करें तो पूरे प्रदेश में एवरेज जो एक्चुअल बारिश है वो सामान्य से अराउंड 10% कम रिकॉर्ड की गई। हालांकि केवल 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें विशेषता लाहौल स्पीति, जहाँ पे सामान्य से 57% कम रिकॉर्ड की गई है।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 स्थानों पर 122 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशन परिवहन निगम के बस अड्डों और वर्कशॉप में स्थापित किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने बताया कि भविष्य में जहां भी जरूरत होगी वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में शामिल 297 इलेक्ट्रिक बसें लंबे व छोटे रूटों पर सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज की युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हों, लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर ना रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं, अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें एक पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज की युवा भाषा का एक दिलचस्प कोड समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को

0: जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज गढ़ती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया, और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों है? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक, और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में न फिल्म है न अखबार, बस एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है। जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन, और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
1: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ, और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है, और अब हमारे जेनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डिलीवरी आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डिलीवरी वर्ड यूज करने में।
0: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैराशोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट। और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है, लंबे औपचारिक भाषणों की

0: जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है वर्टिकल फ्रेम में सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं। दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का

0: सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
1: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहां पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूं। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहां पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटेलिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीजों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा के भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
0: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है। एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
2: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
0: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
1: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल।
2: किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव। ऐसे में जरा सोचिए, जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
3: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है। केरल के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
2: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय, और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
3: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत, मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
2: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: एक गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में और सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोलेगा ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पांस पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या यह कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वर है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड रही, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे एक मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊँ, ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकीअट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत, जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। और शतरंज की बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं, अनुशासन, समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर मंडपा कशारदा का कर्नाटक शैली में गायन।
1: गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक।

0: Tonight we present a vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada.
1: श्रीमती विमला और श्री कृष्णमूर्ति की बेटी डॉक्टर मंडपाका शारदा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री आईवीएल शास्त्री के पास प्राप्त की। तत्पश्चात श्री कोमंडोरी कृष्णमाचार्युलु के पास आपने संगीत की बारीकियां सीखी। 8 वर्ष के अल्प आयु से ही डॉक्टर शारदा अपने कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर की रचनाओं पर आपके शोध कार्य हेतु आपको PhD प्रदान किया गया है। आप आंध्र विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त रही हैं। पिछले 60 वर्षों से डॉक्टर मंडपाका शारदा कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही हैं। आपको कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंडपाका शारदा को आकाशवाणी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन में A ग्रेड और सुगम संगीत में B हाई ग्रेड प्राप्त है और आप Grade 1 कंपोजर भी हैं।
0: Born in Vijayanagaram to Srimati Vimala and Sri Krishnamurti, Dr. Mandapaka Sharada was initiated into music at an early age. She received her initial training in music under Sri IVL Shastri and later honed her skills under the guidance of Sri Komanduri Krishnamacharyulu. Dr. Mandapaka Sharada received her PhD degree for her thesis on the compositions of Pattanam Subramaniam Iyer. She served for several years in the Department of Music of Andhra University. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan in Carnatic music and B-high in light music, she is also a grade 1 music composer. Dr. Sharada has performed more than 3,000 concerts in classical, devotional and light music in several platforms all over the country. She is also the author of 2 books, Swaratarangini and Kriti Manjari. Dr. Mandapaka Sharada is the recipient of a number of awards and felicitations.
1: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मंडपाका शारदा की संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सरस्वतुला हनुमंत राव।
0: In tonight's concert, Dr. Mandapaka Sharada is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumanth Rao on the ghatam.
1: Dr. Mandapaka Sharada aaj ke karyakram ka aarambh karti hain Begad raag mein Sant Tyagaraj ki rachna Bhaktuni Charitramu se jo ki Adi Taal mein nibadh hai.
0: Dr. Mandapaka Sharada begins her presentation with Bhaktuni Charitramu, a composition of Tyagaraja in Begara Ragam Adi Talam.

0: डॉक्टर मंडपा का शारदा की अगली प्रस्तुति है माया मालावगौल राग में श्याम शास्त्री की रचना नीलायताक्षी, जो कि मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: She next presents a composition of Shyama Shastri in Maya Malava Gola Ragam Misra Chaputalam.

0: सुनिए शुद्ध धन्यासी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना श्री पार्थ सारथी जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: वी विल नाउ लिसन टू श्री पार्थ सारथी। It is in Suddha Dhanyasi Ragam, Rupak Talam, and is a composition of Muthuswami Dikshitar.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर मंडपा का शारदा का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर मंडपा का शारदा प्रस्तुत कर रही है कल्याणी राग में पल्लवी गोपालय्यर की रचना नीदु चरण पंकज मुले, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you have been listening to a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapaka Sharada. She is accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. Continuing her performance, Dr. Mandapaka Sharada will now present a composition of Pallavi Gopalayar in Kalyani Ragam Aditalam.

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री ससुरापु सुब्रमण्यम ने और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव ने। डॉक्टर मंडपा का शारदा आज के कार्यक्रम का समापन वृंदावनी राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा द्वारा रचित तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम बाय श्री ससुरापु सुब्रमण्यम एंड ऑन द घटम बाय श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। Dr. Mandapaka Sharada concludes her this evening's presentation with the Tillana of Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Vrindavani Ragam Aditalam.

0: के अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत अभी तक आप डॉक्टर मंडपा कशारदा द्वारा कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे वायोलिन पर श्री महादासु नीलाद्री राव, मृदंगम पर श्री सुसरापु सुब्रमण्यम और घटम पर श्री सारस्वतुला हनुमंत राव। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a classical vocal recital in Carnatic style by Dr. Mandapa Kasharada. She was accompanied by Sri Mahadasu Niladri Rao on the violin, Sri Susarapu Subramaniam on the mridangam, and Sri Saraswatula Hanumant Rao on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani, Vishakhapatnam.
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
4: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता

0: राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
0: The Indian diaspora, comprising mostly of medical